आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन।

0: AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात।

0: कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ रहेंगे रविंद्र सिंह। सात बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचार का। 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ होंगे संतोष राव। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे रविंद्र सिंह 8:02 से। 9 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे। 9:02 पर प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने। आपके साथ रहेंगे संतोष राव। 10 बजे समय रहेगा इंग्लिश में न्यूज हेडलाइंस का। 10:02 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ रहेंगी हिमानी दत्ता।

और अब पेश है मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए भी समझौता किया गया है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ उनकी ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा आज संपन्न होगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंचे। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सीमा पार घुसपैठ, अवैध प्रवासन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सीमा सुरक्षा, ड्रोन से उत्पन्न खतरे तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के हिमालयी तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा का अनुमान है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: और अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
4: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम मनुष्य मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि शरीर नश्वर है मगर आत्मा अमर है, और इसीलिए मृत्यु पश्चात एक और जीवन है जिसे हम अनंत जीवन के नाम से जानते हैं, जहां ना दुख होगा और ना ही होंगी कोई मुश्किलें।

0: करो।
1: दोस्तों, ईश्वर हमारे जीवन में तभी कार्य करते हैं जब हमारा विश्वास संपूर्ण हृदय से उस पर टिका होता है और उसके वचनों पर हमारे कदम हर परिस्थिति में अग्रसर रहते हैं।

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: This program was sponsored by SR Media Academy.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुप्रभात में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। और कहते हैं कि आज अगर सुबह सुबह कुछ खास लोगों से मुलाकात हो जाए तो फिर कहने ही क्या। और ये प्रोग्राम होता भी कुछ ऐसा है कि जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो कार्यक्रम के जरिए हम बढ़ाते हैं आज की बात को आगे और एक बहुत खूबसूरत गीत से शुरुआत करते हैं। उसके बाद सफ़र होगा उस विषय का जो आज हम उठाने वाले हैं। फिलहाल तो अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है कि आज भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, तो ये सवाल किनारे रख दो। किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। ये गीत भी कुछ ऐसे ही कह रहा है, दिल को छूने वाला, कुछ बताने वाला, कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाला एक संदेश है। सुनिए।

कभी कभी कुछ शब्द हमें एहसास करा जाते हैं कि हम सिर्फ हम नहीं हैं, हम बहुत कुछ हैं, और हमारे लिए ये समझना है बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लंबा वक्त लग जाता है जब हमको ये समझ में आता है कि हम असल में हम हैं और हमने कभी अपना ही ख्याल नहीं रखा। तो चलिए सुप्रभात के इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि जागना है और भागना है, यानी जागो और बढ़ो। देखा, ये बात भी है कहती है। और जागना और बढ़ना का मतलब आप समझते हैं कि आगे बढ़ने से है। हम कभी कभी सुबह सुबह आलस कर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई उठें कि ना उठें। सुबह कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी देर से उठते हैं, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। अगर आज उठने का मन नहीं ना भाई साहब, अगर लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा, अगर लग रहा है जिंदगी से थक गए हो, तो जरा रुको, बस अपनी जिंदगी की ये 60 मिनट मुझे दे दो, या जितने बचे हैं उतने अगर दे दिए तो हो सकता है कि ये वो पल हों जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हों। अब आप चाहे अपने हाथ में कप लिए हों या बिस्तर पर लेटे लेटे हमें सुन रहे हों, बस आंख बंद करके सुनो, क्योंकि आज के बाद हो सकता है आपकी जिंदगी को, आपका जो है जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाए। ठीक है, तो अभी तो स्लो थे, अब थोड़ा सा तेजी पकड़ते हैं और जिंदगी को एक गियर और देते हैं। कहते हैं कि अगर जिंदगी में आगे चलना है तो हमारे अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कुछ ऐसे एहसास होने चाहिए जो हमें थोड़ा सा झकझोरे और ये कहें कि भाई जिंदगी आसान नहीं है तो क्या हुआ, हम जिगजैग वाले रास्तों पर भी जिगजैग होके चलेंगे, लेकिन संभल के हैं।

तो समझना तो यही है भाई जिंदगी को कि हम किस तरह हमको जीना है और किस तरह हमको कौन कौन से काम करने, और ये सुबह है ये बताने के लिए आते हैं। तो चलिए, हम हमेशा कहानी थोड़ा देर से सुनाया करते हैं, लेकिन आज हम कहानी शुरुआत में ही अगर सुना दें और उसके बाद हम अपने सफर पे आगे बढ़ें तो कैसा रहेगा। कोशिश की हमने आपको उठाने की कि अगर थोड़ी बहुत सुस्ती आपके अंदर बची है तो वो सुस्ती को हम दूर कर दें। ठीक है, एक ऐसी फीमेल की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो आज दुनिया के लिए, हमारे देश के बच्चियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ कर दिखाना चाहती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तीन बच्चे, घर परिवार, लोगों के ताने। लोग कहते रहे कि जो काम लड़कों के हैं उन्हें लड़कियां नहीं कर सकती, और इस मिथक को तोड़कर रख दिया एक जावाज ने। ताकत, तकनीक और तेजी के बल पर उसने अपनी तकदीर बदल कर रख दी। अपनी तकदीर नहीं बल्कि समाज की सोच बदल दी। उस लड़की को बार बार निराशा के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई, उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की गई। उससे कहा गया कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करते हैं। इसके जवाब इस लड़की ने मुंह पर नहीं दिया बल्कि रिंग में उतर कर दिया। उसके मुक्कों ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिला को धूल चटा दी और वो बन गई भारत की पहली महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, जिनका नाम है मैरी कॉम। वो मैरी कॉम जिसने अपनी कौम को समझा दिया कि लड़कियों को अबला या कमजोर समझना बंद करो, वो भी बिना मौका दिए। एक बार मौका देकर तो देखो, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। देश मैरी कॉम जी को सैल्यूट करता है। मैरी कॉम की कहानी छोटी सही, लेकिन मैरी कॉम का कद आज भी दुनिया में और देश की निगाहों में बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा कि उसको देखने के लिए एक पारखी नजर का होना बहुत जरूरी है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम, भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली मैरी कॉम, एक मां मैरी कॉम, एक बेटी मैरी कॉम, एक गुरूर मैरी कॉम। मैरी कॉम जी, सिखा दिया आपने, जहां चाह वहां राह।

तो भाई साहब, दिल को जिद्दी बनाना पड़ता है और आप लोग भी जिद्दी बनाए हुए हैं। संदेश पे संदेश भेजे जा रहे हैं, कोई नमस्कार कह रहा है, कोई बता रहा है कि भाई कहाँ पर बारिश हो रही है, कोई कह रहा है कि ये बहुत कुछ चीज़ें प्रेरणादायक होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो भाई साहब, सबको नमस्कार, सबको सुप्रभात, और हम यही कहेंगे कि बस हम और आप अगर एक एक रुपया आपस में बांट लें तो कितने रुपये हुए आपके पास? वही भाई साहब, एक रुपया। और अगर हम और आप साथ बैठकर एक एक विचार बांट लें तो कितने विचार हुए? आपके पास भी दो, हमारे पास भी दो। तो पैसे से ज़्यादा विचारों का सौदा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है ना? इसीलिए हम विचार बांटने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में ये कोशिश रहती है कि हमारे दिल के तार आपके दिल के तार से कैसे जुड़े, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी कहानी आपकी कहानी से मिलती तो नहीं है, है ना? फिलहाल बहाने मत बनाना उठने के लिए आप, है ना? अगर बना रहे हो तो भाई साहब बस पूरी ज़िंदगी बहाने ही बनाते रहोगे। तो कहते भी है ना कि बहाने दुनिया देगी फैसला तुम्हारा होगा, बहाने दुनिया देगी फैसला तुम्हारा होगा, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी, है ना, फिर जमाना तुम्हारा होगा। वाह वाह वाह वाह, ऐसे करते हैं ना। इसलिए भाई साहब ये ध्यान रखिए, काम की बात, सिर्फ तीन नियमों को जिंदगी में अगर हम अपना लेते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। पहले नियम की बात करते हैं। नियम नंबर एक, सिर्फ 5 सेकंड होते हैं आपके पास। इन 5 सेकंड के अंदर लिया गया डिसीजन आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो इन 5 सेकंड को काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1, और उठ जाओ भाई साहब। दिमाग 100 बहाने बनाता है, एक्शन उससे पहले होना चाहिए। जो भी पहला काम याद आए उसे सबसे पहले निपटाना है। और भाई साहब अभी यहीं रुकना है, क्योंकि कह देना पिक्चर अभी बाकी है। जज्बा, जोश कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। क्रिकेट देखते हैं आप, तो उसी क्रिकेट के एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि भाई जोश जज्बा हो तो कैसा होना चाहिए। वैसे आप भी किसी ना किसी को सोचते होंगे, देखते होंगे किसकी तरह जज्बा है, इन भाई साहब की तरह तो नहीं है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों

भाई साहब यही तो मानना, और उतनी देर से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आपको ये कहना पड़ेगा। तो शीशे के सामने जाओ, खड़े हो जाओ, और रूल नंबर एक तो हमने आपको बता दिया है कि भाई साहब क्या करना है। केवल अगर आपको किसी काम की शुरुआत करनी है तो 5 सेकंड होते हैं आपके पास, उसके अंदर अगर डिसीजन ले लिया तो ठीक है, वरना बैठे रहो भाई साहब, सोते रहो, बिस्तर में चादर तान के लेटे रहो, है ना। चलिए नियम नंबर 2 भी बता देते हैं और 3 भी बताते हैं एक साथ। अपनी तुलना भाई साहब बंद कर दो। सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है लेकिन उसका स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देता, और इसीलिए जब हम दूसरे से तुलना करते हैं तो हम सिर्फ उसकी अचीवमेंट देखते हैं, उसकी जो संघर्ष है उसको नहीं देखते हैं। इसलिए

भाई साहब, ये नियम नंबर दो यही है कि आप अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, डिफरेंट रहेंगे, और आपको शुरुआत करनी है आज से, अभी से, तुरंत, है ना। 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लीजिए और क्या करना है सोच लीजिए। नियम नंबर 3 ये होती है भाई साहब, अपने कल को आज में बदल लो। मत कहो कि कल कर लूंगा, कल उठूंगा, कल जिम जाऊंगा। जो करना है भाई साहब आज करो, अभी करो, शुरू करो, वरना इसी कल के चक्कर में अपने सारे आज गंवा दोगे। और कहावत तो आप जानते हो, टुमारो नेवर कम्स। काम की शुरुआत आज ही करो, छोटे काम से शुरू करो, लेकिन आज ही सबसे पहला काम। अपनी दिनचर्या को सुधारना, नियम से, संयम से, लगन से, और शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराना, कहना खुद को आई एम द बेस्ट, है ना। और एक कहानी देश को और चाहिए, हो सकता है वो कहानी आपकी हो, तो फिर डरना क्या, सोचना है, लिखना है, बनाना है, इतिहास रचना है। अब ये भी गीत भी कुछ ऐसे ही कहता है कि अपनी कहानी समझनी होती है, दूसरों की कहानी पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, और अपनी कहानी लिखने से सुकून मिलता है।

दुनिया यही कहेगी भाई चलता चलता आदमी ये चला और कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। तो बस जाते जाते सिर्फ तीन बातें याद रखना, गिरना अलाउड है, रुकना नहीं है। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी से शुरू करो, तुमसे हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि तुमने अब तक हार नहीं मानी। यानी अगर आप लगातार चल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें आपने हार नहीं मानी, और आपको तब तक हार नहीं माननी है, तब तक निराश नहीं होना जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाई साहब अब जब आईने में खुद को देखो तो आप उस इंसान को थैंक यू बोलना जो

आज मेहनत शुरू कर रहा है। मैं फिर मिलूंगा आपसे, है ना, इसी समय इसी एनर्जी के साथ। तब तक लिए जागो और बढ़ो भाई साहब, क्योंकि बढ़ना ही जिंदगी का नाम है और आप होने वाले हैं असली चैंपियन। हालांकि एक घंटे बाद हम फिर मिलने वाले हैं, लेकिन अब आ रहे हैं राव साहब। तो राव साहब की आवाज़ इतनी दमदार है, उसी समय सुनिएगा। मैं लेता हूँ इजाज़त, बाय बाय।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए भी समझौता किया गया है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ उनकी ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा संपन्न होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंचे। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंद्र शेखर रॉय, सुस्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के हिमालयी तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा का अनुमान है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। और अंत में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी, और आकाशवाणी पर अब आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आज है 10 जुलाई और दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार जैसे ही हमारे लबों पर आता है ना, आपको तो पता ही है, लेकिन हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अब आपके भी आती है तो आप हमें बता दीजिए।

और हाँ एक बात और हमारे दिमाग में है ना, जब मुस्कान आ जाती है तो दिमाग में शुरू हो जाती है एक प्लानिंग सैटरडे और संडे की, और फिर हमारा दिल चुपके से एक संदेश भेजता है दिमाग को कि लेट्स डू धमाल, क्योंकि शुक्र है शुक्रवार है। अब आप माने या ना माने, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स का मानना है कि जब जब दिल दिमाग से कहता है कि लेट्स डू धमाल तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब जब दिल की सुनी जाती है ना तो जो हमारा ये लिम्बिक सिस्टम होता है ना वो ऐसा इमोशनल फीलिंग्स भरने लगता है जो मजा और रोमांस का आनंद देने के लिए उत्सुकता जगाता है। जैसे अभी मेरे अंदर उत्सुकता जाग रही है वो गीत खुद सुनने की और आपको सुनाने के लिए, जैसे सुनकर आप भी कह उठेंगे शुक्र है शुक्रवार है हमको तुमसे प्यार है। ना ना ना ना, ना ये गीत के बोल नहीं है बल्कि फीलिंग्स है मेरे दिल की। तो चलिए पहले दिल की फीलिंग्स को आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद बात करेंगे आज के दिन के बारे में और आपको बताएंगे कि 10 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण दिन है इतिहास के लिहाज से। तो बने रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ।

0: जी हाँ, अगर आपका दिल भी मेरे दिल की तरह यही कह रहा है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह पर है कहीं पर नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका भी जो लिम्बिक सिस्टम है ना, मेरी तरह पार्टी मोड में जा रहा है। जी हाँ, लेकिन जैसे मैंने अपने दिल पर काबू किया हुआ है, आप भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अभी तो सुबह हुई है, सुबह के और बज रहे हैं 7:09 हो गए हैं और अभी पूरा दिन बाकी है। ऑफिस में काम कीजिएगा आज जोश के साथ और फिर अपनी प्लानिंग पर आप ध्यान दीजिएगा। बहरहाल अभी हम ध्यान देते हैं उन घटनाओं पर जो आज के दिन यानी 10 जुलाई को इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर। आज ही के दिन 10 जुलाई 1553 में लेडी जेन ग्रे इंग्लैंड की रानी बनी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो उस वक्त केवल 15 साल की थी। जी हाँ, 15 साल की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो सिर्फ 9 दिनों के लिए इस पद पर रही, मतलब रानी बनकर रही। उसका कारण यह था कि किंग एडवर्ड 6 जो सिर्फ 15 साल के थे, वो उनको बीमारी हो गई थी और वो मृत्युशैया पे पड़े हुए थे, मतलब उनकी मृत्यु नजदीक आ रही थी। तो उनके पिता हेनरी 8 को डर सताने लगा कि अगर उसकी सौतेली बहन मैरी ट्यूडोर बन गई महारानी तो पूरा इंग्लैंड कैथोलिक हो जाएगा, जबकि हेनरी खुद प्रोटेस्टेंट थे। और इसी वजह से लेडी जेन ग्रे को 10 जुलाई 1553 को जबरदस्ती रानी बना दिया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की जनता मैरी ट्यूडोर को रानी बनना देखना चाहती थी और इसी वजह से मैरी ने एक फौज बनाई और 15 वर्षीय जेन ग्रे को कैद कर लिया जाता है और फिर 6 महीने बाद 12 फरवरी 1554 को मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी जाती है। यानी 15 साल की उम्र में रानी, 9 दिन में खत्म कहानी। हिस्ट्री में से कहते हैं, जब दिमाग का गेम दिलों पर पड़ जाए भारी तो अंजाम दुखद ही होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: दोस्तों, 10 जुलाई 1938 में हार्वर्ड ह्यूज ने लॉकहीड 14 N2 सुपर इलेक्ट्रिक ट्विन इंजन विमान से उड़ान भरी थी और 91 घंटे 14 मिनट और 10 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और हार्वर्ड ह्यूज ने 1933 में विले पोस्ट का 186 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से FAI ने इसको ऑफिशियल अराउंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं माना, क्योंकि हार्वर्ड ह्यूज ने जो तय दूरी होती है ना 22,858 मील की, मतलब माइल्स की, तय नहीं किया था, जो 8,058 मील छोटा था। यानी हार्वर्ड ह्यूज ने 14,800 माइल्स का सफर तय किया था। खैर, 51 घंटे वाला रिकॉर्ड बिल्कुल बना, लेकिन बस ऑफिशियल FAI रिकॉर्ड नहीं माना गया। लेकिन ये रिकॉर्ड आज भी पूरी दुनिया में फेमस है, सबसे पहले इसी रिकॉर्ड की बात होती है। ठीक वैसे ही जैसे बॉक्स ऑफिस पर फिल्में फ्लॉप हो जाती है ना, लेकिन उनके गीत आज भी सुपर डुपर हिट होते हैं, हम जब भी सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो आइए आपको 1995 का वो गीत सुनाता हूँ जब राजा को रानी से प्यार हुआ था और जहाँ दिल ने दिमाग से पूछा ही नहीं बल्कि सीधा बोला लेट्स डू धमाल। यानी यहाँ भी लिम्बिक सिस्टम हावी रहा। आप आनंद लीजिए इस गीत का फ्रॉम द मूवी अकेले हम अकेले। तुम आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विथ SR बोले तो संतोष राव।

दोस्तों फिल्म अकेले हम अकेले तुम में राजा यानी आमिर खान को रानी यानी मनीषा कोइराला से प्यार हो जाता है, लेकिन अभी हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी लव स्टोरी जो एक अंग्रेज और फ्रेंच लेडी के बीच हुई थी। जी हाँ, एक अंग्रेज थे रिचर्ड वेलेसली। अपनी जवानी के दिनों में इनकी मुलाकात होती है एक फ्रेंच एक्ट्रेस हाइसिंथे गैब्रिएले रोलैंड से। पहली नजर में दोनों को प्यार हो जाता है, शादी का मन बनाते हैं, मगर हिंदी फिल्मों की तरह है ना, जैसे दिखाया जाता है हिंदी फिल्मों में कि घर वाले राजी नहीं होते, ऐसा इनके साथ भी हुआ था। तो दोनों ने हिम्मत दिखाई और 1974 में समाज की परवाह न करते हुए साथ साथ रहने लगे, मतलब लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और जब इनके 5 बच्चे हो गए तब पूरे 30 साल के बाद 29 अक्टूबर 1825 में इन्होंने शादी कर ली। मैं इनकी कहानी क्यों बता रहा हूं, ये वही लॉर्ड वेलेसली हैं जिन्होंने 1800 में कलकत्ता

0: कलकत्ता यानी अब जो कोलकाता बन गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ताकि अंग्रेज जो अफसर हुआ करते थे, अंग्रेजी अफसर यहाँ पर आकर भारतीय भाषा और यहाँ के साहित्य के बारे में सीख सकें, जान सकें। एक मजेदार बात और बताऊं, इनके छोटे भाई है ना आर्थर वेलेस्ली, जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे, और इन्होंने ही नेपोलियन को हराया था। क्या बात है, जहां एक भाई दुनिया जीत रहा था तो दूसरा दिल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: दोस्तों, 1965 में जब देश को लेडी ऑफिसर्स की फौज चाहिए थी, तब शाहरुख खान की तरह ग्वालियर शहर बोला मैं हूं ना। हाँ, और यहाँ 10 जुलाई 1965 में खोला गया देश का पहला एनसीसी कॉलेज, जो सिर्फ था महिलाओं के लिए। वैसे एनसीसी की गर्ल्स डिविजन्स की शुरुआत हुई थी 1949 में हो गई थी, लेकिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, आज ही के दिन ग्वालियर में पहली बार बना था। ये भारत एकमात्र संस्थान था जहां पर भारत के अंदर जहां महिला अधिकारी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स AIR एयर गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर जो होती थी ना, उनको ट्रेन किया जाता था। हर साल देश भर से 90 से ज्यादा लेडी ऑफिसर्स यहां पर ट्रेनिंग लेती हैं। मतलब दिल में धमाल, दिमाग में डिसिप्लिन और कंधे पर देश की जिम्मेदारी। इनके लिए तालियां तो बनती है ना हमारी ओर से। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गीत भी बनता है, तो आप आनंद लीजिए। आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विद SR, SR बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों ये गीत था 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी से, जिसे लिखा था गीतकार असद भोपाली जी ने। भोपाल में आज ही के दिन जन्मे असदुल्ला खान, जिन्हें हम असद भोपाली जी के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्मदिन था। आपने 1949 में फिल्म दुनिया से बॉलीवुड में एक गीतकार बनकर सफर तय शुरू किया था और एक से बढ़कर एक गीत लिखे, जैसे जो गीत अभी आपने सुना वो संगम फिल्म का, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर नाराज मत होना, है ना, फिर भी आएंगी फिल्म का, आपके हुस्न हसीन रुख पे, और वो गीत है ना, वो हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर, सुबह सुबह नहीं गाने चाहिए ऐसे गीत भाई। आनंद फिल्म का गीत है ना, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने बुने, ये गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं सुबह सुबह। गैम्बलर फिल्म का दिल आज शायर है, क्या गीत है, जबरदस्त, मेरे बहुत दिल के करीब गीत है और बहुत प्यारा लगता है। और पारस मनी फिल्म का वो जब याद आए बहुत याद आए, वैसे तो उसके पारसमनी के सारे गीत बहुत बढ़िया लिखे हैं। ऐसे ही तकरीबन उन्होंने 400 से ज्यादा गीत लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब असद भोपाली जी कलम उठाते थे तो मोहब्बत खुद शायरी बन जाया करती थी। उनके लिखे गीत दिल के झरोके से लेकर प्रेम पत्र तक, हर लफ्ज में इश्क और हर मिसरे में धमाल नजर आता है ना। आज असद भोपाली जी की पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है उनको नमन, और आपको हम सुनाते हैं उनका ही लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत जो मेरे दिल के बेहद करीब है। आनंद लीजिए इस गीत का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

जी हाँ, हमेशा जीत की ललक रखने वाले क्रिकेट के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के लबों पर रहता था यही गीत किशोर कुमार का गाया हुआ, और हर वक्त वो यही गीत गुनगुनाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब कानपुर की मार्शनेल दिल्ली में हो रहे एक मैच में खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेने पहुंची तो एक साइड में खड़े खड़े मार्शनेल को देखते देखते यही गीत गा रहे थे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर कि दिल आज शायर है, गम है, नगमा है, शब इंतजार है, ये कैसा इशारा है। अब मार्शनेल को पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे सुनील गावस्कर जी। और फिर 23 सितंबर 1974 को सुनील गावस्कर की मेहनत रंग लाती है और उनसे वो शादी कर लेते हैं। बहुत, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले थे, कानपुर बहुत बार गए थे। खैर, 1971 में वेस्ट इंडीज के दौरे पर जब दुनिया कहती थी कि फास्ट बॉलिंग से बचो, तब सुनील गावस्कर बोलते थे, बचेंगे क्यों, धमाल करेंगे बिना हेलमेट के। 10,000 रन, 34 शतक, लिटिल मास्टर ने साबित किया कि दिल बड़ा हो तो कद से फर्क नहीं पड़ता। पद्म भूषण सुनील गावस्कर को आज उनके 77वें जन्मदिन की आकाशवाणी FM रेनबो देता है ढेरों शुभकामनाएं।

दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते मेरे जहन में भी ना कुछ कुछ होने लगा और एक बात घूमने लगी कि वो लड़के अपने आप को कितना खुश नसीब समझते होंगे जिनकी मोहब्बत जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। उनका प्यार उनके लिए नहीं बदला है ना, वरना मुस्कान सोना मोसिया की कहानी सुनते सुनते तो एक करंट सा लग जाता है ना, और हम सोचने लगते हैं कि हम आज किस दिशा में जा रहे हैं। खैर, करंट से मुझे याद आया कि बिजली का झटका है ना बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए बिजली से खेल नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं खेलना चाहिए। और ये बात महान आविष्कारक और वैज्ञानिक निकोला टेस्ला बखूबी समझ चुके थे कि लड़की द्वारा दिया गया झटका जिंदगी पर पड़ सकता है भारी, और इसीलिए उन्होंने किसी भी लड़की को अपनी दुल्हन बनाने से बेहतर समझा विज्ञान को अपनी दुल्हन बनाना। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये उनकी है शब्द थे। वो कहते थे कि एक इन्वेंटर को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादी और फिर बच्चे अटेंशन बांट देते हैं, जबकि इन्वेंशन के लिए फोकस को भी बहुत जरूरी होता है, उस पर फोकस रखना। और इसी थ्योरी पर चलते हुए महान आविष्कारक और वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट बिजली प्रणाली की खोज की थी, तो वहीं डीसी यानी डायरेक्ट करंट की खोज की थी थॉमस एडिसन ने। जब बिजली का करंट की बात चल रही हो तो एक जानकारी और दे दूं कि जब भी हम करंट चेक करते हैं ना तो हमेशा हम हथेली की तरफ से चेक करते हैं, और अगर उसमें करंट होता है तो चिपकने का डर बना रहता है, इसलिए जब भी करंट चेक करना हो तो हथेली को अपने फेस की तरफ करके चेक करें। उससे क्या होगा कि अगर करंट आ रहा है तो वो झटके से आपके हाथ को दूर फेंक देगा और फिर चिपकने से आप बच जाएंगे। वैसे हमेशा टेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए और बिजली को बिल्ली समझकर उससे खेलने की भूल कभी ना करें आप। जी हाँ, और ये सब ज्ञान दिया था निकोला टेस्ला ने, जिनका 1856 में आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 1856 में जन्म हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, और एक प्यारा सा गीत झटके वाला हो जाए।

जी हाँ दोस्तों, झटका तो हमें भी लग गया क्योंकि रविंदर सिंह आ चुके हैं और उन्होंने भी हमें जोर से करंट मारा है। कह रहे करंट की बात कर रहे हो तो मैं बताता हूँ करंट कैसे लगता है, जल्दी से कुर्सी छोड़िए। बहरहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे 8 बजे से रविंदर सिंह और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, आप बने रहिएगा। लेकिन जाते जाते हम आपको एक बात और बता दें कि आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार ज़ोरा सहगल की। आज ही के दिन यानी 10 जुलाई 2014 को उन्होंने इस दुनिया को कहा था अलविदा। और आज भारत में हरित क्रांति के नायक और प्रसिद्ध इंजीनियर समाजसेवी सर गंगाराम की भी पुण्यतिथि। आकाशवाणी FM रेनबो इनको करता है शत शत नमन। तो इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष रावल लेता है आपसे विदा। लेकिन हाँ, 9 बजे आपके साथ फिर जुड़ जाएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर। तो आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर और 8 बजे से आपका साथ निभाएंगे रविंदर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संतोष भाई ने हमें सौंपी है, तो हम चले लेकर चलते हैं। लेकिन बहुत प्यारे से गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके पास ढेर सारी जानकारियों का पिटारा होगा हमारे पास, जिसके लिए बने रहना होगा आपको हमारे साथ इस पूरे 60 मिनट तक, यानी 1 घंटे तक, क्योंकि हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आज को, बहुत कुछ सुनाने वाले हैं आपको। कोशिश रहेगी आज का दिन बनाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही सुपर डुपर हिट प्यारे से नगमे के साथ। आवाज़ है नंदिनी श्रीकर और कोरस की, भरे नैना।

सुबह या आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। और कहते हैं कि भाई मौसम जो है अगर सुहाना हो जाए तो पूरा दिन बन जाता है, और हमारी भी ये कोशिश रहते हैं कि गीत कुछ ऐसे होने चाहिए, नगमे कुछ ऐसे होने चाहिए, बातें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिन को बना दें, और यही कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि भाई साहब ये जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जो मौसम का मिजाज अचानक से बदला है, इसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो तुकमीरपुर में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, और इस बारिश का भी ज़्यादातर हिस्सा रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच बरसा है। अंदाज़ा लगाइए, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 44 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है यहाँ पर। और अब जो है मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि पिछले जो 2 दिन हैं वो दिल्ली पर जो बना हुआ भारी बारिश का मौसमी सिस्टम है वो अब थोड़ा थोड़ा हौले हौले कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आएगा, और इसके चलते अब बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा कम हो जाएंगी। और आज की अगर बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का भी अनुमान है। और तापमान जो भाई साहब रहने वाला है उसमें आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। तो आप इसमें अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बदलता मौसम हमेशा सेहत बिगाड़ देता है। और एक और अच्छी खबर भी है, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो 3 वर्षों में सबसे साफ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सब कुछ अगर बढ़िया बढ़िया होता, बारिश भी बढ़िया हो गई और इसके साथ साथ आबो हवा भी ठीक हो गई है, तो फिर सब ठीक ही है। तो इनके बिन कुछ होना नहीं है, और हमारा आपके बिन कुछ नहीं होना है। गाना भी कुछ ऐसे कहता है, बस जुड़े रहना है, प्यारे प्यारे गीत बजेंगे और उसके साथ साथ जानकारियां भी होंगी, बातें होंगी दिल से दिल तक। कार्तिक भाई गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

वैसे भी आपके बिन होना क्या भाई साहब, लेकिन जिसके लिए होना है वही तो होना चाहिए, क्योंकि जिन रास्तों से होकर हम गुजरते हैं उन रास्तों की जानकारी अगर हमें रहती है तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ा आसान हो जाती हैं और हमारा सफ़र थोड़ा सुहाना हो जाता है। और इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस है हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अपडेट जारी कर देती है कि अगर आप कुछ रास्तों से होकर गुजर रहे हैं तो उन रास्तों की हमें जानकारी दे देती हैं। इसलिए दिल्ली NCR की चूँकि बात कर रहे हैं तो आप गाज़ियाबाद से जो आने वाले लोग हैं दिल्ली की तरफ, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी गुरुवार को ही जारी कर दी।

0: क्योंकि बारिश की वजह से नेशनल हाईवे है वहां पर पानी भर गया था और लंबी लंबी कतारों की वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। और गाजियाबाद से जो आने वाले लोग हैं सेक्टर 62 से वसुंधरा होते हुए बुद्ध चौक पहले जाएं और फिर मोहन नगर की ओर बढ़ें और आखिर में सीमापुर से दिल्ली की तरफ प्रवेश करें, तो आपके लिए सफ़र सुहाना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी भर चुका है और पानी निकालने का लिए यहाँ पर निगम ने पंप सेट लगाने का काम अब तेज़ कर दिया है और जल्द ही ये रास्ते साफ़ हो जाएंगे। लेकिन बहुत पानी भरा है क्योंकि कल जब बारिश हुई थी उस वक्त मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था, क्या स्थिति थी मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी लंबी कतार लगी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता वाहन रेंग रहे थे। इसलिए आप अगर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हो और नेशनल हाईवे की तरफ से आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे कि सेक्टर 62 से वसुंधरा होते हुए आप बुद्ध चौक जाएं, फिर मोहन नगर की ओर बढ़ें और आखिर में आपको सीमापुरी से दिल्ली में प्रवेश करना है। ठीक है, हम भी एक छोटे से मतलब एक अल्प विराम में प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
3: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
4: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
3: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो भाई साहब उम्मीद कर रहे हैं गीत तो दिल में उतर गया होगा और आप सोच रहे होंगे, खो गए होंगे कि भाई मौसम भी बढ़िया है और गीत भी बढ़िया है। तो चलो खो जाते हैं, लेकिन खोने नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जो आप तक पहुंचानी है, खासकर उन विद्यार्थियों के पास जो एडमिशन लेने के लिए प्रमाण पत्र जुटाने में जुटे हुए हैं। तो भाई साहब अगर आप यहाँ पर दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं DU में, तो आप स्नातक दाखिले के लिए CSAS पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी है, वहाँ पर जा सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि DU ने अपने पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को शुरू तो कर दिया और उन्होंने साफ किया है कि आरक्षित वर्ग जो है SC ST OBC और NCL और EWS, इनके जो अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन से पहले अपने प्रमाण पत्रों की जाँच एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए। और ये भी स्पष्ट उन्होंने किया है DU ने कि जो भी निर्धारित प्रारूप है और वैध प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप आरक्षित श्रेणी का जो दावा है वो स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा। और साथ ही ऐसे जो मामले हैं इन मामलों में दाखिला आपका रद्द भी हो सकता है, इसलिए अपने प्रमाण पत्र को पहले से आप चेक कर लें। तो नॉन क्रीमी लेयर जो है OBC प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 के बाद का स्वीकार नहीं होगा, उससे पहले का अगर है तो वह स्वीकार होगा। और पुराना EWS प्रमाण पत्र भी वैधता में आपकी बाधा बन सकता है, इसलिए अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप उसके पोर्टल पर जाकर और ज़्यादा अपडेट खुद को कर सकते हैं। हमारा काम यह है कि हम आपको अपडेट करें ताकि आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी आप निभा रहे हैं तो फिर उससे पहले आपको अपने सारे प्रमाण पत्रों को जुटा लेना चाहिए। और

डेट भी हमने आपको बता दी कि अगर आप ओबीसी प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो इसको 31 मार्च 2026 के बाद का स्वीकार नहीं होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसलिए पूरी तैयारी कर लीजिए और पहुंचिए। गीत यूं ही बजते रहेंगे और मौसम भी बढ़िया है तो गीत भी बढ़िया सा आपके लिए।

और वैसे भी भाई मौसम अगर सुहाना होता है तो सब कुछ शायराना सा होने लगता है, और मन करता भी है कि हम कुछ शायरी करें, कुछ गुनगुनाएं। तो ऐसे ही दिन बना रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हमारी तो यही कोशिश रहती है। और आप भी कोशिश यही कीजिए कि भाई साहब जहाँ भी हैं जैसे भी हों मस्त रहें बिल्कुल, क्योंकि ये सपने हैं, सपनों की तरह ही पूरी ज़िंदगी है, और इसको वैसे ही देखना चाहिए। सब किस सपने को कितना खूबसूरत बनाना ये भी तो हमारे ऊपर है। अगर

0: हम सपने खुद देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, तो क्या सपना देखना है ये भी तो हमारे ऊपर होता है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के दिन को आपको कैसा बनाना है, तो आपको अपने दिन की शुरुआत भी बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी। और सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेकर आना होगा, सोचना होगा कि भाई क्या आज का वो पहला दिन है जो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही करता हूँ कि शीशे के सामने जाता हूँ, प्यार से मुस्कुराता हूँ, और उसके बाद आगे का काम शुरू होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है और अमूल्य चीज़ है, तो वो है हमारी मुस्कुराहट। और ये मुस्कुराहट अगर बरकरार रहती है पूरे दिन, तो समझ लीजिए कि हमने आज कुछ अच्छा काम कर दिया। इसलिए भाई साहब सपने भी देखिए, और सपनों की जो उड़ान है वो आपको आसमान तक ले जाएगी, और मेहनत की रोशनी वो हर अंधेरा मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत ही मंजिल दिलाएगी। तो आप अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो भाई साहब फिर से हम बोलते रहें कि रास्तों का ध्यान रखें, अपडेट लेते रहें, और उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ें, और हम इसी तरह से सफ़र को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि हमारा काम है आपसे बात करना और आपको ये बताना कि भाई क्या क्या वो जानकारियाँ हैं जो आप तक पहुँचानी है। सुनते रहिए FM रेनबो पर, कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये भाई साहब जो शब्द कहे ना, सब तेरा, तो बहुत सारे लोग जो ट्रेन में चलते हैं ना, वो वहां से कुछ कुछ उठा के चल देते हैं। उनको लगता है कि जो भी चीजें ट्रेन में मिल रही वो सब तेरा ही है भैया, लेके चलो घर ले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे अब लगाम लगने वाली है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको एसी ट्रेनों में ट्रेन के कंबल मिलते हैं, और अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है ऐसे लोगों से निपटने के लिए कि जो लोग ट्रेन के अंदर से सब तेरा समझकर वो कंबल लेकर घर चले जाते हैं। तो भैया तैयारी क्या है ये सुन लीजिए आप, क्योंकि अगर आगे से आपने इस तरह का कोई काम किया तो फिर आपकी तो बैंड ढंग से बजने वाली है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कितना भी छुपा लें, अब ये छुपने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी कि ट्रेन के जो एसी कोच हैं उसमें कभी तौलिया है, कभी कम्बल है, कभी चादर है, कभी तकिया है, उनके जो कवर हैं वो चोरी हो जाते हैं। तो इस पर भी अब लगाम लगाने की रेलवे बोर्ड ने तैयारी कर ली है, और अपने बेडरोल मैनेजमेंट को पूरी तरह से हाईटेक करने का यहाँ पर मन बना लिया। और इसके ज़रिए आप जानते हैं क्या किया जा रहा है, अब जो है कंबल और चादरों के भीतर बहुत ही बारीक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाई जाएगी, जिससे चोरी के मामलों पे रोक लगाई जा सकेगी। और जहाँ हर वर्ष होने वाले जो बेडरोल की चोरी है उस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। अब जो है RFID चिप लगाने के साथ ही ट्रेन का जो निकास द्वार है जहाँ से आप एग्जिट एंटर होते हैं वहाँ पर सेंसर लगा दिए जाएंगे। तो अगर आप कंबल को या चादर को या टॉवल को या पिलो के कवर को लेकर निकलते हैं तो ये सेंसर तुरंत उसका पता लगा लेंगे। तो ट्रेन पे चढ़ते हुए या ट्रेन से उतरते समय दरवाजे का सेंसर तुरंत अलार्म देगा, और उसके बाद क्या होगा आपको बताइए भाई साहब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, है ना। इसलिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे बस इतना ही कहेंगे, भाई साहब आप ऐसा कोई काम ना करो, नहीं तो आपको कराया जाएगा शाबा शाबा। हम लोग तो खुश होकर करेंगे, लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो अलग ही ढंग से है ना, आप जानते हैं कौन करेगा। तो तैयार रहिए आगे से, ना जी ना जी ना,
1: चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4
0: 1 2 3 4 करते नजर आएंगे भाई साहब। जुड़े रहिए हमारे साथ 102.6 FM रेनबो पर, मैं हूं आपके साथ रविंद्र, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हमारी तो कोशिश थी भाई साहब आपको नचाने की, लेकिन हमारे पीछे जो खड़े हुए जो राव साहब हैं वो बहुत तेज तेज नाच रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सर्दी में अगर गर्मी का एहसास करना हो तो आपको या तो नृत्य करना पड़ेगा या फिर आप करें योगा, और जिसने ये दोनों नहीं किया उसने कुछ ना कुछ भोगा। इसलिए आप ध्यान रखें भाई साहब, हमारे साथ जुड़े रहना है तो आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर लगेगा, जानकारियां तो मिलेंगी मिलेंगी, और उस पर मस्ती अलग, बातें तो होती रहेंगी भाई दिल से दिल तक। तो चलिए जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है ज्ञान वो भी हम बटोर देते हैं, मतलब जो जानकारी हमारे पास है वो आप तक पहुँचा देते हैं। यहाँ पर जो लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो 15 जुलाई तक की ये तारीख है, तो आप ध्यान रखें इस दाखिले के लिए पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 15 जुलाई को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी, आप उसके लिए अगर तैयार हैं। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो www.ipu.ac.in पर आप जा सकते हैं, और या फिर www.ipu.admissions.nic.in पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, EWS श्रेणी के प्रवेश का आज कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है, तो निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, EWS वंचित समूह DG और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जो है उनकी श्रेणी के लिए शुक्रवार को यानी कि आज कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा, और जो ड्रॉ है वो पुराना सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से निकाला जाएगा, तो आप वहां पर मौजूद रहिए, आपको जानकारी देनी थी, जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, अपना टाइम आप निर्धारित कर लें ताकि समय से अपने उस स्थान तक आप पहुँच सकें। और जो लोग सफ़र करने वाले होते हैं भाई, जिनको लगता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास है। धनबाद के लिए एक ट्रेन जो है, विशेष ट्रेन जो है, उसकी अवधि यानी उसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। यात्रियों के लिए शकूर बस्ती से धनबाद जंक्शन के बीच ये ट्रेन जो है चल रही है, और उत्तर रेलवे ने 14 जुलाई से बढ़ाकर इसको 1 अगस्त कर दिया है, और गाड़ी संख्या है 03639। शकूर बस्ती से हर सोमवार और शुक्रवार को वापसी इसकी होती है 03640, धनबाद से हर मंगलवार और शनिवार को। तो ये जानकारियाँ छोटी छोटी नहीं लेकिन आपके बेहद काम की थी, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें होती हैं वो है आपको और मस्त करने वाले गीत। तो आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं मस्त रहिए, क्योंकि हम और हमारे बाद जो आ रहे हैं इसी तरह से नगमे बजाते रहेंगे और आपका दिन बना रहेगा एक के बाद एक फर्स्ट क्लास बिंदास। जैसे मौसम बदलता है हम नहीं बदलते, हमारा तो मिजाज बदलता रहता है गानों का।

नाचने का सिलसिला तो चलते रहेगा भाई साहब। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर। इस गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ का आज डिफरेंट वे में आप लुत्फ उठाने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ में दो आवाज़ें होंगी, आप पहचानेंगे किसकी कौन सी है।

0: प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया।
0: प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंद्र शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला प्रशासन ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से राही हॉप जम्मू बस सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की घोषणा की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया।
1: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार।
0: और खेलों में पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4थे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
1: मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ऑस्टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब शुरू होगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और आज आपके साथ रहेगा आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

0: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: बदले हैं, बातों के लिहाज बदले हैं, तुमको तो जमाना हो गया, वर्मा तो फिर भी आज बदले हैं।
1: जान कहते थे जो
2: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

और दोस्तों ये ट्रेन आप पहुंची है दिल्ली तक और हम भी प्यार की ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं। बस आप लेकिन बने रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर आ रही हैं हिमानी दत्ता। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आशा भोसले विद होठों पे बीती बात आई है फ्रॉम द 1982 फिल्म अंगूर. लिरिक्स बाय गुलजार एंड म्यूजिक बाय आरडी बर्मन. दिस वाज एज मैचलेस कैन बी. आई होप यू वॉच दिस फिल्म टू एंड इफ नॉट वेल द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू गो बिंज वॉचिंग व्हाट विद द वीकेंड कमिंग अप. सो इफ यू रियली डोंट हैव any plans as such, you could book your seat in front row of your device. And talking about Sanjeev Kumar, he was one actor to always willingly take up the most unconventional roles and make them powerful and unforgettable. There are so many more movies in which he gave stellar performances. He was an actor with matchless talent, personality and energy. And now that I mentioned energy reminds me of something very important, but only after this

आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर आ गए हैं हम एक बार फिर से आपके पास लेकर बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। अब बॉलीवुड डेफिनेटली सबको बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं और साथ साथ मिलती हैं अपकमिंग फिल्म्स की जानकारियाँ और होता है बहुत कुछ खास यहाँ पर। जी हाँ, हम मनाते हैं किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे और साथ में पूछते हैं आपसे एक सवाल, और सवाल का सही जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो जाएगा कहीं नहीं, रहेगा इस एक घंटे मेरे यानी कि आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि के साथ ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम रेनबो 102.6।

जी हाँ बिल्कुल, नैनो वालों ने ऐसा जादू डाला है कि वो बस आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसा ही जादू डालती है हमारी फिल्मी सेलिब्रिटीज़ भी, बहुत कुछ छोड़ जाती हैं हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर अपना इम्पैक्ट। और ऐसे ही हैं हमारे सिद्धार्थ कपूर, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात मैं करने वाली हूँ। और ख़ास बात ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ना मतलब एक के बाद एक जो फिल्म्स दी हैं वो वाकई में काबिले तारीफ़ है, उनकी एक्टिंग भी। जहाँ उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना करियर स्टार्ट किया था, और उसके बाद कपूर एंड सन्स आई, एक विलन आई, शेरशाह में उन्होंने इनक्रेडिबल काम किया है, और ऑफकोर्स लोगों को काफ़ी पसंद आए। और एक बार फिर से उन्होंने धूम मचा दी थी कियारा के साथ एक गठबंधन में बंधकर, राइट। तो लेकिन अब जो इंतज़ार है ना सभी को है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन से। जी हाँ, और ख़ास बात ये है कि ये जो फिल्म है ना जिसे द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, इसकी जो रिलीज डेट है वो एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, ऑलरेडी 2-3 बार इसके रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि एक बार फिर से पोस्टपोन हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना भाई। हो ये रहा था कि ये जो फिल्म थी ना पहले

रिलीज होनी थी 26 अगस्त को, लेकिन अब हुआ ये कि इस दिन दो बड़ी फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो रही हैं। कौन कौन सी भाई? एक है श्रद्धा कपूर की ईठा और दूसरी है यश की बड़े बजट की टॉक्सिक। तो मेकर्स को लगा ऐसा ना हो कि इन दोनों फिल्मों के चलते थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए दबन के साथ में, तो इसलिए उन्होंने अब इसको ना रिलीज़ करने का फैसला किया है 26 अगस्त को। अब ये रिलीज़ होगी 25 सितंबर को, यानी कि थोड़े से दिनों के बाद, लगभग एक महीने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि उनका डिसीजन ठीक भी है। यदि ऐसा मौका हमें मिल रहा है तो क्यों हम बेकार में परेशान हो, और एक महीने बाद से ही फिल्म की रिलीज़ हो जाएगी तैयार, तो फिर लोगों को मिल जाएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नेक्स्ट फिल्म द वन देखने को।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: वेल, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि, और लेकर आई हूँ आपके लिए एक से बढ़कर एक खबर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन का जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब खबर ये भी है कि जो रश्मिका मंदाना है वो क्या कर रही हैं, डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले सुनाऊँगी आपको एक प्यारा सा ट्रैक।

जी हाँ, और हम बात कर रहे थे रश्मिका मंदाना की। कॉकटेल 2 के बाद रश्मिका मंदाना अब स्क्रीन पर बिल्कुल एक नए रूप में आने को तैयार हैं। जी हाँ, वो अपनी नेक्स्ट फिल्म मैसा की शूटिंग में व्यस्त हैं। कहा यह जा रहा है कि ये रश्मिका मंदाना के करियर की पहली एक्शन थ्रिलर होगी और जिसके लिए वो काफ़ी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, खूब खून पसीना बहा रही हैं। जी हाँ, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं और इस बार उन्होंने क्या किया है, अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस शूट करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपको पता है कि ये जो पहला फीमेल लीड अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस है, उसके लिए उन्हें बोला गया था कि बॉडी डबल का या एक्शन डबल का वो प्रयोग कर लें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और तकरीबन 20 घंटे पानी में बिताए और 2 दिन तक उन्होंने इसके लिए शूट किया। भाई देख सकते हैं कि किस तरह से लगन और मेहनत के साथ रश्मिका काम कर रही हैं। और यकीन मानिए, मैसा के जो सेट पर भी ना सब लोग काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अप्रिसिएशन दे रहे थे कि वाकई में रश्मिका काफ़ी मेहनती लड़की हैं और काफ़ी मेहनती एक्ट्रेस हैं और वाकई में इंडिया का पहला फीमेल लीड अंडर वाटर सीक्वेंस इसे कहा जा सकता है। तो क्या बात, इंतज़ार करेंगे आप भी रश्मिका की इस सीक्वेंस को देखने का, बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं इंतज़ार नहीं, बिल्कुल नहीं कराऊंगी आपको रश्मिका की ही फिल्म से नेक्स्ट सॉन्ग सुनवाने का।

0: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
0: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: और अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड रील्स और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी कौन, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जब हम आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं एक छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा सवाल। अभी हमने आपसे बात की एक प्यारी सी एक्ट्रेस के बारे में जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। कितनी ही फिल्में उन्होंने पैन इंडिया की, पहले साउथ की स्टार रही वो, और अब पैन इंडिया फिल्में करके ना वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की भी चहेती स्टार बन गई हैं। और अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसमें इनके साथ थे शाहिद कपूर, राइट? तो आपको आज के सवाल में बताना है बस यही कि वो कौन सी लास्ट रिलीज फिल्म है रश्मिका मंदाना की जिसमें इनके साथ थे शाहिद कपूर। जल्दी से लिखकर भेज दीजिए उस फिल्म का नाम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमारे पास 9868107070 है हमारा नंबर। जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और बता दीजिए कि कौन बन जाएगा हमारा आज का बॉलीवुड सरताज।

0: गोलमाल गोलमाल।
1: जी हाँ, गोलमाल गोलमाल और बहुत कुछ गोलमाल। अब आपको पता है गोलमाल क्या होने वाला है? गोलमाल ये होने वाला है कि जो अपकमिंग फिल्म है गोलमाल 5, उसमें एक जबरदस्त एंट्री होने वाली है। भाई पहले सुनने में

याद होगा, तो बस वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा गीत है जिसके थ्रू आप उनको पूरी तरह से पहचाने जाएंगे। तो एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ बिल्कुल, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान वाली। जी हाँ, उसी फिल्म में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक था, उस ट्रैक में ये एक्ट्रेस नज़र आई थी डांस करते हुए। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ प्रिया मणि की। तो चलिए ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ साथ वेट करते हैं गोलमाल 5 का, जब अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ साथ ढेर सारे स्टार्स वाली इस फिल्म में नज़र आएंगी प्रिया मणि एक नेगेटिव अंदाज में।

0: जी हाँ, सब मोर सब चाहते हैं कि कुछ और मिल जाए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कुछ और हमारे दोस्तों के मैसेजेस आ जाएं बिल्कुल सही आंसर के साथ। जी हाँ, आज का हमने जो सवाल पूछा है ना, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा है, और वो ये है कि रश्मिका मंदाना की लास्ट रिलीज फिल्म कौन सी थी। यदि आपने भी देखी है या फिर आपको पता है उस फिल्म का नाम, तो जल्दी से लिख कर भेज दीजिए अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आपने फोन नंबर लिखा होगा तभी तो हम आपको बना पाएंगे ना आपके बॉलीवुड डिसअटैच, क्या आपको विनर बना पाएंगे, राइट। तो बस जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और हम हैं आपके साथ यहाँ पर स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो 102.6 पर।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बॉलीवुड रील्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, तो उसका इंतज़ार तो डेफिनेटली मैं कर रही हूं कि कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज। लेकिन साथ साथ मैंने आपको बोला कि इंतज़ार उन लोगों को भी है जो धुरंधर के ज़बरदस्त फ़ैन रहे। अभी आपने धुरंधर का गाना सुना ना, तो उसके साथ ही मुझे याद आ गया आपको एक न्यूज़ देने का, वो भी धुरंधर के जो हमारे डायरेक्टर हैं ना आदित्य धर की। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में ना रणवीर सिंह को नहीं लेने वाले। ऐसा कैसे चलेगा भाई, रणवीर का क्या होगा, या ये कहिए हमारा क्या होगा, है ना। तो वो कौन से एक्टर होंगे जिनके साथ वो नेक्स्ट फिल्म बनाएंगे, सोचिए सोचिए, जल्दी सोच कर बताइए। क्या आपको पता है उस एक्टर का नाम? भाई ऑब्वियस सी बात है, रणवीर सिंह को रिप्लेस करने वाले वो कौन से एक्टर रहेंगे वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आदित्य धर ने यदि ये सोचा है कि रणवीर सिंह को वो रिप्लेस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में। ऑब्वियसली धुरंधर नहीं बना रहे वो फिलहाल, वो दूसरी फिल्म होगी, तो वो कौन से एक्टर होंगे। तो भाई आपको बता दें

फिल्में करते रहे हैं, तो किन की बात करी, उस सुपरस्टार की मैं बात कर रही हूँ कि वो पैन इंडिया फिल्में करते रहे हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्टर आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट भी उनको पसंद आ सकता है। तो रिपोर्ट्स की यदि हम माने तो साउथ के जो सुपरस्टार हैं प्रभास हो सकते हैं आदित्य धर की नेक्स्ट फिल्म के स्टार। जी हाँ, उन्होंने एक्टर को अपनी नई फिल्म की कहानी सुनाई है और सुनने में ये आ रहा है कि प्रभास को उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यदि दोनों की सेटिंग हो गई, आपस में बातचीत फाइनल हो गई, तो बिल्कुल कंफर्म हो सकता है कि आदित्य धर की नेक्स्ट फिल्म में प्रभास लीड रोल निभाएं। वैसे आपको बात बात बताऊं तो प्रभास इस वक्त ना भारतीय सिनेमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, बहुत सारे ये कह सकते हैं कि एक बिजी स्टार हैं इस टाइम। उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके पास फिल्मों की, जिसमें सबसे पहले है फौजी स्पिरिट, साथ में है कल्कि 2898 AD पार्ट 2, सालार के पार्ट 2 में भी वो नज़र आएंगे, और साथ साथ उन्होंने सालार के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ 3 और बड़ी फिल्में साइन की है। तो देखिए ना कितनी सारी फिल्में हैं, तो क्या वो आदित्य धर को वाकई में उनके मन मुताबिक डेट्स दे पाएंगे? यदि दे देते हैं तो मुझे लगता है हमें एक और बहुत ही अच्छी फिल्म मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल हमें मिलने वाला है प्रभास की ही फिल्म का ये ट्रैक आपके और हमारे लिए।

0: साइकिल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।

0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी आरजे रॉकिंग रश्मि। और हमने आपसे पूछा है बहुत ही रॉकिंग सा सवाल। रश्मिका मंदाना हम सभी के फेवरेट हैं, आपकी भी, हमारी भी, और मुझे लगता है पैन इंडिया में सभी की। तो भाई मैं ये जानना चाहती थी कि इनकी जो अपकमिंग फिल्म है मैसा के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि इनकी लास्ट रिलीज फिल्म कौन सी थी, है ना। आपके सवालों का जवाब आप हमें लिख सकते हैं 9868107070 पर, वो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप लिखेंगे मुझे सही नाम, अपना भी और फिल्म का नाम भी, साथ में देंगे अपना फ़ोन नंबर। यदि आपका जवाब बिल्कुल सही

होगा तो मैं आपको बना सकती हूँ आज का बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी जल्दी लिख कर भेज दीजिए 9868107070 पर सही जवाब। और अब वक्त है ये जानने का कि आज है किसका बर्थडे। तो भाई आज एक ऐसे एक्टर हैं जिनको आपने एज ए डांसर भी बहुत पसंद किया है, ऐसे कोरियोग्राफर भी बहुत पसंद किया है, और साथ साथ आपने उन्हें टेलीविज़न प्रेजेंटर, एक कॉमेडियन के तौर पर भी, और एक्टर तो वो मुझे लगता है कि अब बेहतर बनते जा रहे हैं, द किंग ऑफ स्लो मोशन, जी हाँ, राघव जुआल का आज बर्थडे है, जिन्हें आपने डांस प्लस जैसे सीरियल्स में देखा, यहाँ रियलिटी शोज में देखा, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा, और किल में उन्होंने एक किलिंग परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन साथ साथ अब अपनी द पैराडाइज के साथ में वो चर्चा में हैं, तो आज राघव मना रहे हैं अपना 35वां बर्थडे। तो राघव आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, लेकिन साथ साथ इनके एक और भी एक्टर हैं जिनका बर्थडे हम मनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनाऊंगी ये ट्रैक।

जी हाँ, और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि वो कौन से जो आज के हमारे लिसनर हैं वो बन गए हैं आज के बॉलीवुड सरताज। बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है रश्मिका मंदाना की। बहुत सारे लिसनर्स के मैसेजेस आए, लेकिन सही जवाब देकर सबसे पहले कौन बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, जानते हैं उन्हीं के मुँह से, सुनते हैं उनका नाम। हलो हलो हलो हेलो हेलो हेलो। आई थिंक ये जो हमारे लिसनर हैं ये चली गई हैं, हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि आप होल्ड रखिएगा, लेकिन हमारे पास वो नहीं आई हैं। ये थी धर्म भाटिया, इनका रोहतक से मैसेज आया था, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया था। इसके अलावा तरुण कोहली सूरज कुंड रोड से भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, और सही जवाब है कॉकटेल टू। इसके अलावा रंजन कुमार गुलाब सिंह का संत नगर से मैसेज आया है। अरुण सेन का जिला थार मध्य प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब है। ईशा का धर्मशाला से है। उमेश कुमार का ख्याला से। आसिफ सैफी है मेरठ से। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनका बिल्कुल सही जवाब है। इरशाद अशरफी है, विजय कुमार, कमल कुमार है शालीमार बाग से, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से। इसके अलावा प्रवीण चौहान ने खरगोन मध्य प्रदेश से लिखा था। सलीम मलिक ने मेरठ से। तरुण कोहली का नाम ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। और कौन है, ये तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके नाम मैंने बिल्कुल सही सही पढ़ दिए। पंकज अमरावती से है, सुखलाल बाला है वेस्ट बंगाल से, और साथ साथ हैं ये कौन, ये हैं संजय खत्री कोल्हापुर महाराष्ट्र से। नौशाद चौधरी ने लिखकर भेजा है हमें बिल्कुल सही जवाब। राजकुमार के संतानी हैं, और साथ साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जिन्होंने आज हमें बिल्कुल सही जवाब लिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सरताज से बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात होगी। लेकिन हाँ, अब चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, चलते चलते आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज वो कौन से दूसरे एक्टर हैं जिनका बर्थडे मैं मनाने वाली हूँ इस प्रोग्राम में। तो वो हैं आलोक नाथ, जिन्हें आपने बहुत सारे करेक्टर मतलब उसमें प्रोग्राम फिल्म्स में देखा है, एक करेक्टर रोल्स में। ख़ासतौर पे मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। टीवी स्टार भी हैं, लेकिन आज वो मना रहे हैं अपना 70th बर्थडे। तो उनको हमारी तरफ से, एफएम रेनबो की टीम की तरफ से बहुत बहुत बर्थडे। और फिलहाल आपके लिए ये ट्रैक छोड़े जा रही हूँ, एंजॉय कीजिए, और वापस 1 बजे आपसे फिर मुलाकात।

0: Post Malone there with Pour Me a Drink. And of course, we're talking about chai, we're talking about piña colada. And can I ask you a question? Of course, you don't need to let me know, but answer that to yourself. A very honest question, a very honest answer to yourself. How long has it been since you had some water? That's the most important drink, isn't it? So while you go and get yourself a glass of water, if you haven't had it for a long time, well, I'm taking a break. You can go and have some water.
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशन।

0: That was Lady Gaga with 911 and Swati from Patna, Bihar. You're more than welcome always. Time for me to take the last break and I'll be right back.
1: Tum meri rakho laaj hari.
2: हमारे हृदय के भाव जुड़ें प्रभु से और हम सब करें आराधन. आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल. शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल.

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिज्ञ, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का आसार है। और खेलों में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। यह पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है इंदिरा जसूजा और वो इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ कोई 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा काम है अस्पतालों में जाके इमोशनल सपोर्ट देना और लोगों को ढाढ़स बंधवाना, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि मनोबल के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप हर सप्ताह उत्सुकता से ICS की इस वार्तालाप का इंतज़ार करते हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न कैंसरों के बारे में आपको जागरूक करती है। आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट कैंसर। ये केवल पुरुषों से ही संबंधित है। पुरुष इसके बारे में ऐसे ही बात करना पसंद नहीं करते जैसे स्त्रियां स्तन के या बच्चेदानी के कैंसर में चुप रहती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती। यौन संबंधी कोई भी वार्तालाप करने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक ही है, इसलिए हम आज खुलकर इसकी जानकारी आप सबको देंगे। आज का ये विषय मैं ऐसे भी विभाजित करती हूँ। पहला है, ये आपको जैसे क्वेश्चन है, प्रोस्टेट क्या है और ये कहाँ स्थित है। दूसरा है, इसका क्या कार्य है। इसके बदलाव, तीसरा है, इसके बदलाव के क्या लक्षण हैं। चौथा, उम्र के साथ इसका क्या संबंध है। पांचवा, कौन से टेस्ट से पता चलता है कि ये कैंसर है। छठा, इलाज किस विधि से हो सकता है। सातवां, इसका भविष्य क्या है।

मतलब इसका प्रोग्नोसिस क्या है। तो पहला उत्तर जो हमने आपको क्वेश्चन किया था, प्रोस्टेट क्या है, ये एक अखरोट की तरह देखने वाला ग्लैंड ब्लैडर यानी के मूत्रालय के नीचे और रेक्टम मलाशय के आगे स्थित है। इसका भार लगभग 30 ग्राम के करीब होता है, जिससे कि उम्र के साथ बदलाव आता है, वो थोड़ा और भारी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसका काम क्या है। जैसे स्त्रियों में ओवरीज अंडे पैदा करती हैं, उसी प्रकार प्रोस्टेट एक तरल पदार्थ पैदा करता है, जिसको हम सीवन सीमन या वीर रस कहते हैं, और इसी के जरिए स्पर्म पैदा होते हैं, जो कि यौन संबंध से एक स्त्री को गर्भवती करते हैं। तीसरा था इसके बदलाव के क्या लक्षण हैं। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट में बदलाव आना बहुत स्वाभाविक है। हर बदलाव कैंसर को नहीं दर्शाता, उसके लिए कुछ और लक्षण भी होते हैं। प्रोस्टेट के स्वाभाविक बदलाव में है सूजन आना, रात को बार बार अपने को हल्का करने के लिए उठना, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, उसका कम मात्रा में आना, जिस कारण बार बार शौचालय जाने, कभी कभी यौन संबंध समय के वक्त पीड़ा का भी होना होता है। याद रहे, इन सब का मतलब कैंसर नहीं है। आयु के साथ ये बदलाव बहुत स्वाभाविक है, परंतु हम हर समय एक सतर्कता की बात करते हैं। 50 की उम्र के बाद हर मनुष्य को इसकी जांच करानी ही चाहिए। अब हम आते हैं डायग्नोसिस मतलब निदान पर, कैसे पता चले कि ये कैंसर है नहीं है। डॉक्टर हाथ से ही निरीक्षण करके आपको बता सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट में कुछ बदलाव आया कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि कोई लक्षण होने पर ही जांच के लिए जाया जाए। जैसे मैंने कहा, समय समय पर इसका निरीक्षण करने से कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है। अब हमारा अगला सवाल है कि किस टेस्ट से कैंसर का पता चल सकता है। एक बहुत ही आसान सा रक्त जांच का टेस्ट है, जिसे हम PSA यानी प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट कहते हैं। इसके लिए पेशाब का एनालिसिस भी किया जाता है। याद रहे, हर प्रोस्टेट का मतलब कैंसर नहीं है, जबकि जो कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डॉक्टर आपकी पूरी जानकारी लेकर ही इसके बारे में सोचते हैं। आपको यहाँ कुछ ऐसे कारण बताए जाएंगे जिससे हम कैंसर के होने की शंका कर सकते हैं। वे है, पहला, 50 साल की आयु से ज्यादा होना। इसका मतलब है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के की संभव हो सकती है। दूसरा है, परिवार में पिता भाई या पुत्र को ये कैंसर होना। तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी में जीन बदलाव होना। जैसे हम स्त्रियों में स्तन कैंसर में BRCA1 और BRCA2 के बारे में कहते हैं, उसी तरह हम प्रोस्टेट कैंसर में भी इसकी बात करते हैं। चौथा, कुछ एक ये भी देखा गया है कि कुछ एक मुल्कों में इसकी संख्या ज्यादा है। पांचवा, धूम्रपान, जो कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। धूम्रपान को हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये हर कैंसर का कारण बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं इलाज पर, जो कि निर्भर करता है सबसे पहले कितनी जल्दी पकड़ा गया है, क्योंकि अगर वो जल्दी पकड़ा जाता है, कोई भी कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है, तो उसका निदान बहुत संभव है। दूसरा, ज्यादा भयानक लक्षण तो नहीं है, जैसे कि पेशाब में खून आना।

फंसाना, ये सब चीजों को देखना पड़ता है। उसी जगह पर ही निर्धारित है कि कहीं और फैल गया है। अगर वो दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है तो हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं आसपास के अंगों में तो नहीं फैला, जैसे ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सब के में अगर वो आग फैलता है तो हम कैंसर के बारे में सोचते हैं। अब हमने किया था इलाज, क्या इलाज इसमें हो सकता है? इसमें से हम कीमो, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी और ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने और भी बहुत सी अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न की हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो कि इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिरी प्रश्न है, इसका भविष्य क्या है? सबसे पहले बात है बीमारी का पता लगना। मैंने बार बार कहा है, जितनी जल्दी में इसके बारे में पता लगता है उतना ही जो इलाज है वो आसान है और उससे जल्दी ठीक होने का भी विचार रहता है। हर तरह के कैंसर में ये दो चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, एक तो उसका बीमारी का पता लगना और उसका जल्दी पता लगना। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें मृत्यु की आशंका सबसे कम है। याद रहे, समय पर इलाज और आपकी सतर्कता और 50 की उम्र के बाद विशेषज्ञ से निरीक्षण आपको एक लंबी और खुशहाल जीवन जीना का मौका देगा। अब मैं आपको कुछ ICS के बारे में बताती हूँ। ICS का डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड पर स्थित है, जहाँ से सोमवार से शुक्रवार 9 से 12 बजे तक बहुत कम दामों में डॉक्टर नाक, कान, मुंह और छाती का निरीक्षण करते हैं। छाती का एक्सरे, पैप स्मियर, स्तन की जांच आदि भी की जाती है। प्रोस्टेट भी देखा जाता है, वो खाली टेस्ट से नहीं, वो खाली डॉक्टर लोग हाथ से उसका पता लगा लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो PSA की बात भी करते हैं और आपका यूरिनरी टेस्ट भी करवाते हैं। नवंबर के महीने में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का और अप्रैल में आदमियों के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए निःशुल्क निरीक्षण भी किया जाता है। कृपया अपॉइंटमेंट के लिए हमारे डिटेक्शन सेंटर का नंबर नोट करें, वे है 2371649 मैं फिर से कहती हूँ 2371649 यहाँ 10 से 12 बजे तक यह हमारा सेंटर खुला होता है। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है 9910516562 यानी के 9910516562 और इस पर आप रिंग करके कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रहे कि हर समय इस नंबर पे फ़ोन मत करें, उसका सेम एक निर्धारित समय है 10 से 4 बजे तक। ICS गांवों, बस्तियों और कॉरपोरेट्स में डिटेक्शन कैंप्स लगाती है और भिन्न भिन्न कैंसर के बारे में बताती है। स्कूलों और कॉलेजों में बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। ये सब कार्य निःशुल्क ही किया जाता है। इसमें डॉक्टर आदमियों का प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी निरीक्षण करते हैं। ICS ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के साथ मिलकर एक सेल्फ लर्निंग कोर्स भी किया है। ICS ने एक मोबाइल एप्लीकेशन राइज अगेंस्ट कैंसर के नाम से तैयार किया है, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन पर जाकर उसको उतार सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उतार सकते हैं। इसमें हर प्रकार के कैंसरों के बारे में, उनके लक्षण, इलाज और मानसिक निदान के बारे में पूरी पूरी जानकारी

0: जानकारी डॉक्टरों ने भी दी है। ये एप्लीकेशन 5 भाषाओं में विकसित किया गया है, इंग्लिश, हिंदी, कनाडा, बंगाली और मराठी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरी भाषाओं में भी इसको विकसित किया जाए। आशा है आपको आज की इस चर्चा से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज का हमारा ये संदेश है कि आप सावधान रहें और अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में चौकन्ने रहें। आपको ही अपने शरीर के बारे में पता है, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर पकड़े जाने पर इसका 100% निदान ढूंढा जा सकता है। आप इस बीमारी में अकेले नहीं हैं। ICS हर प्रकार से आपकी सहायता करने में तत्पर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। खुश रहें और सतर्क रहें, यही मेरी प्रार्थना है।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस।
3: FM Rainbow 102.6।
2: जी हाँ, और वक्त आ गया है आपके पसंदीदा गानों का। जी हाँ, बिल्कुल बजाने को तैयार हैं हम आपके पसंदीदा गाने किस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है वही जाना पहचाना, मेरा वाला सॉन्ग, या ये कहें आपके वाला सॉन्ग या त्वाड़े वाला सॉन्ग। जनाब तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी से, अपने फ़ोन जो है अपने हाथ में रख लीजिए और व्हाट्सएप खोल कर 9868107070 पर अपना मैसेज लिखकर भेज दीजिए अपने नाम के साथ। कौन सा गाना है सुनने का आपका मन आज? मैं हूँ आपके साथ कौन? जी हाँ, मैं हूँ वही आपकी प्यारी प्यारी यार जी रॉकिंग रश्मि। और आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं ना, वो भी बहुत प्यारे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो रेगुलर हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, जो कि बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास पहुँच चुके हैं। जब हमारा स्पॉन्सर प्रोग्राम चल रहा था ना, तो हमारे लिसनर्स ने लगातार अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे हमारे पास मैसेजेस भेजने के लिए। तो चले जल्दी जल्दी मैं उन सबके नाम पढ़ देती हूँ जिन लोगों ने अभी तक मुझे मैसेज किया है, और कुछ कुछ गाना उन्होंने चाहा भी है। तो सबसे पहले मैसेज आया है कविता का, देवभूमि उत्तराखंड से, बेवफा सनम का गाना सुनना चाहती हैं। कविता जी, इतना अच्छा खूबसूरत सा मौसम है और क्यों सैड सॉन्ग में लगी हुई हैं आप? कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गाना और आपका मूड बिल्कुल फ्रेश कर देंगे। पद्मावत का गाना सुनना चाहते हैं, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीत का खोरवाल और भानु प्रकाश। सर जी, यदि आपने मेरा बॉलीवुड ट्रेल सुना होगा ना, तो सबसे पहला सॉन्ग मैंने इसी फिल्म का और यही वाला गीत बजाया था। इसके अलावा मेरठ कैंट से, बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने लिस्ट भेजी है, चलिए नाम मैं फिर पढ़ूंगी इनका। सुखलाल बालाजी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, साथ में ये है नौशाद चौधरी, कहाँ से लिखा है इन्होंने, मंडोली दिल्ली से। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं। तो बस सबसे पहले मैं जो गीत ले रही हूँ ना, आज के मौसम को देखते हुए, बहुत खूबसूरत मौसम है, और इसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी है अमरदीप कुमार ने, कुप्पम पट्टी जलाकंडा पुरम बाज़ार सेलम ज़िला तमिलनाडु से। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और ख़ास तौर पे आज के मौसम पर, या ये कहें कि पिछले कुछ दिनों के मौसम पर ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है।

जी हाँ, मन तो बिल्कुल नहीं है कि इस गाने को छोड़ दूं बीच में, लेकिन चूंकि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं अपने पसंद का गाना सुनना, तो आज थोड़ा थोड़ा गाना सुनेंगे लेकिन साथ साथ करेंगे बातें बहुत सारी। एक मैसेज आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, मेरा वाला सॉन्ग में आलोक नाथ जी को बहुत ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सर जी, आई थिंक उन तक आपकी शुभकामनाएं पहुँच गई हैं, और कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। साथ साथ सौरभ अनेजा का मैसेज आया है, हमेशा की तरह है, कहते हैं मेरी कोई चॉइस नहीं है बट मेरा नाम ले लीजिए। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय का आया है मैसेज, और इन्होंने कहा है कि सब कुशल मंगल फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। सर, मैंने बहुत कोशिश की कि ये गाना मुझे मिल जाए बट अनफॉर्चुनेटली गाना मुझे नहीं मिला है, तो आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा गाना ज़रूर बताइएगा जो मैं ढूंढ कर आपके लिए ज़रूर बजा सकूं। राइट, इस वक्त एक और हमारे मैसेजेस लिस्ट में आ रहे हैं लगातार, जो मैसेजेस उनमें जो नेक्स्ट गाना मैं सुनवाने वाली हूँ वो किसकी पसंद का है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो बहुत लंबी सारी लिस्ट है ना, उनके मुझे लगता है नाम ज़रूर मैं लेना चाहती हूँ। सबसे पहले जिनका मैसेज आया है मुझ तक, ये कौन है? ये हैं होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। इनके साथ में एक और है विशाल शाक्य फतेहगढ़ से, इन्होंने लिखा है ओके, आज मतलब सबको बारिश वाले गाने ही सुनने हैं। हाँ ठीक है, बारिश है, मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या और भी कोई गाना आप सुनना चाहेंगे? बताइए बताइए। हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट आई थी, लिखने वाले थे ये कहाँ से, ये थे मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारी लिस्ट बनाई है इन्होंने, लेकिन हाँ उनमें एक गाना मुझे लगा है क्योंकि मौसम आज खूबसूरत है, तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं और एक बार फिर से आऊँगी आपके लिए लेकर मेरा वाला सॉन्ग। लिखते रहिए अपनी पसंद के गीत। हाँ

वेल, इनका मन यदि कीचड़ में फिसल जाने को है, रपट जाने को, तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन हम तो मज़े लेंगे गानों के और साथ साथ गाने के बहाने इस बारिश के मौसम के, है ना। यदि आपने अभी अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून किया है तो आपको बता दूं 9868107070 है, 70 हमारा नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी चॉइस का गाना सुन सकते हैं, बता सकते हैं हमें अपनी चॉइस। तो जल्दी से लिख लीजिए, अपनी अपनी चॉइस बना लीजिए। मैं आपको फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक पर ले जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ आपके एक और पसंदीदा ट्रैक के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: एक बार फिर से मेरा वाला सॉन्ग में आप सभी का स्वागत। मैसेज आया है ओखला संगम विहार दिल्ली से, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। इसके अलावा एक मैसेज और आया है, ये कौन है, इनका नाम है कासगंज से, लिख रहे हैं मास्टर राधेश्याम शाक्य जी, और चाहते हैं गुंडागर्दी फिल्म का ही गाना सुनना। चूँकि सर जी मैंने गाना ढूँढा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे कभी किसी प्रोग्राम में गाना यदि मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली बजाऊंगी। एमडी साबिर का मैसेज आया है, माफ़ कीजिएगा, एमडी साबिर का मैसेज आया है नोएडा से। और इसके अलावा ये कौन है, ये है मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, लिख रहे हैं ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर, उत्तर प्रदेश से। और इसके अलावा एक मैसेज और आया है, ये कौन है, ये है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से, और काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी, और ये है दुर्गेश नागनपुरे और राधेश्याम नागनपुरे। और साथ साथ इनका होली चौक से, सर जी मैंने पहले ही आपके यहाँ मैसेज पढ़ दिया है, कार्ड से मोहम्मद फुरकान का मैसेज आया है, और स्वागत कर रहे हैं मेरा, थैंक यू सो मच सर, इस प्रोग्राम में काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। ऋषिकेश से मैसेज आया है पुनीत का, और साथ साथ एक मैसेज आया है हम तक जोया का, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, और ये गाना सुनना चाहते हैं रॉकी फिल्म से। तो सर जी रॉकी का ये गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ मेरा वाला सॉन्ग में।

0: जहाँ रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के बाद एक छोटा सा ब्रेक इंतज़ार कर रहा है आपका भी और मेरा भी। तो चलिए ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बिलोली जिला कासगंज से सत्येंद्र सिंह का मैसेज आया है, विजयपत का गाना सुनना चाहते हैं। और साथ साथ इस्लाम सलमानी ग्राम बाजितपुर जिला बदायूं, रेशमा मंतशा मुस्कान।

और अदनान और अरमान, ये सारे के सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी शिद्दत से प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं। मनोज सिंह ने लाजवंती गार्डन का से इन्होंने मैसेज किया है और मौसम के हिसाब से गाना है। तो सर जी, मौसम के हिसाब से तो काफ़ी सारे गाने बच चुके हैं ना, कोई और गाना भी बताइए। मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। ये कौन है? कविता जी टिहरी गढ़वाल से इनका मैसेज आया है। इसके अलावा एक मैसेज किसका है, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन कहाँ लिखा है वो ढूंढ लेते हैं। इनका कहना है कि आज ही हमें देख भी रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन ये लिखने वाले हैं कहाँ से, जनकपुरी से इनका मैसेज आया है। एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं कस्बा गनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा, ऊपरकोट बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान अरजान और साथ में पूरा का पूरा अब्बासी परिवार। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है भगवती जी का नई दिल्ली से, और ये कौन है? ये है, मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। पंकज जी, आपका नाम मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, अमरावती से आपका मैसेज आया था। लेकिन साथ साथ हमारे पास एक मैसेज और आया है, ये कौन है? इन्होंने लिखा है पद्मपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, और ये चाहते हैं कौन सा गाना सुनना। बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है, किशोर कुमार की आवाज़ में है। नहीं नहीं, किशोर कुमार है या मोहम्मद रफ़ी है, चलिए आप बताइए कि कौन से सिंगर हैं हमारे हम किसी से कम नहीं मूवी का ट्रैक है और गाना कौन सा है, चलिए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं।

आसाम से मैसेज आया है हितेंद्र दास का, कहते हैं किसी भी गाने के साथ नाम शामिल कर लीजिए। तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से हमें अपना नाम लिखकर भेजा। भगवती जी ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं, नई दिल्ली से इनका मैसेज आया है। इसके अलावा एक मैसेज आया है मध्य प्रदेश से, AK पांडे ज़िला पन्ना, और ज़िला पन्ना मध्य प्रदेश से AK पांडे और हर्षवर्धन पांडे का। और ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? ओके, ये गाना सुनना चाहते हैं, मैंने पढ़ लिया है सर बिल्कुल आपका नाम। और इसके अलावा एक मैसेज आया है, ये है ओके, इसके कच्चे धागे फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, कांता खंडेलवाल। तो कांता जी आज तो ये गाना मैं नहीं बजा पाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी मतलब लंबा गाना है, फिर किसी दिन मौका मिलेगा ज़रूर बजाएंगे। सीता त्यागी, अरिंजय त्यागी, हरमान त्यागी, मायरा त्यागी, सोनिया और प्रदीप त्यागी का मैसेज आया है दिल्ली के द्वारका जगह से। इसके साथ साथ एक मैसेज और आया है, ये है कौन, रवि लिख रहे हैं मेरठ से। और साथ साथ हमारे पास एक मैसेज किसका आया था, ये थे हमारे पास एक हमारे लिसनर से, कहते कई बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और आपने मेरा नाम तो पढ़ लिया लेकिन मेरा गाना नहीं बजाया। विकास शाक्य फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात है सर, मतलब एक मक्खन लगाने वाली जो बात है ना वो आपने कह दी है, तो चलिए आज आपका ये मक्खन मैं ले लेती हूँ और आपकी पसंद का ये गाना सुनाती हूँ। हालांकि गाना बहुत लंबा है लेकिन लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर बजाऊँगी। वजह कितनी इतनी कि मुझे भी ये गाना बहुत पसंद।

0: डॉली, बिल्कुल गलत बात है आपने जिस तरह से लिखा है ना, मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। डॉली लिख रही हैं, सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था चांद मेरा दिल। बिल्कुल सही आपने कहा कि उनकी आवाज़ में ही था और शो बहुत अच्छा कर रही हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन साथ साथ इन्होंने मुझे बोला है कि यदि ये गाना मैंने बीच में काटा तो मुझे पाप लग सकता है। भाई पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, जो आपके जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स मेरे साथ में है ना, तो वो बिल्कुल भी मुझे पाप नहीं लगने देंगे, क्योंकि जब मैं उनकी पसंद का कोई और अगला गाना बजाऊँगी ना, तो डेफिनेटली उन्हें अच्छा लगेगा। आज बहुत सुंदर सुंदर गानों की लिस्ट होने वाली है, आपका शो बहुत सुना जाता है, थैंक यू सो मच सर। लिखने वाले हैं तनुज रमन वार्ष्णेय, प्रवल रमन वार्ष्णेय, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर आपने एक्चुअल में मेरा दिन बना दिया है। और साथ साथ ये कौन है, ये है बागेश्वर निषाद, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, गोरखपुर यूपी से लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गाना भी पसंद आ रहा है। और ये लिखा है अमरावती से, पंकज जी का मैसेज आया है कि हम किसी से कम नहीं मूवी का गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। बिल्कुल सही आपने पहचाना सर। और इसके अलावा कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु का मैसेज आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक इन्होंने सुनना चाहा है और मैं बिल्कुल जाने वाली हूँ। लेकिन साथ साथ मेरे कुछ एक लिसनर्स और हैं जिनके नाम मैंने नहीं पढ़े थे, हालांकि मैंने बता दिया था कि जनकपुरी नई दिल्ली से इनका मैसेज आया था। और ये थे लिखने वाले प्रदीप सलूजा। तो प्रदीप जी आपका बिल्कुल मैंने नाम देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने ज़रूर आपका नाम बोला है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी लिख रहे हैं शांतिपथ सोनी, शांति नगर सोनीपत से, माफ़ कीजिएगा, हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो, लेकिन थोड़ी सी गलती कभी कभी माफ़ कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल करेंगे। बोल बच्चन का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सर। राम बाबू जी भोपाल से इनका मैसेज आया है। और ये कौन है, ये भी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैना, कनिक, मयन, सीमा, अनीता, सोनिया, वंशिका, शिवालिका, कृषिका और कार्तिक, और ये सब मुझे मैसेज कर रहे हैं रोहिणी के, अदली के रोहिणी से, और साथ साथ बहुत सारा प्यार भेजा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का, आप सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का बहुत प्यारा मैसेज भरा, प्यार प्यार भरा मैसेज जो है मुझे मिल गया है। इसके अलावा दिल्ली के करण विहार से मैसेज आया है सत्येंद्र मौर्य का। और अब जो गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो मैंने नाम उनके ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो चलिए उनकी पसंद का गाना सुनते हैं। फिल्म है अनोखी अदा और ये गाना ना सच मानिए मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये वही सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किशोर कुमार की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए और वापस आइए मेरे यानी कि अपनी आरजे दोस्त रॉकिंग रश्मि के पास।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें आज मेरा प्रोग्राम काफ़ी पसंद आ रहा है, और तो उम्मीद करती हूँ कि बिंदास बोल में भी थोड़ा सा इसी तरह के मैसेजेस आप ज़रूर भेजेंगे. और मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है तो डेफिनेटली उस बात को आगे तक भी पहुँचाएँगे. हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम लेना मैं शायद भूल गई हूँ. रॉक स्टार का ये गाना सुनना चाहते थे, लेकिन सर रॉक स्टार का ये गाना मेरे पास बिल्कुल नहीं है. राजस्थान की हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी नागौर से इनका मैसेज आया है. कृष्णा इंदा और बिलाल अहमद हैं. इसके अलावा डॉली ने एक बार फिर से कहा है कि मजाक था. बिल्कुल जनाब, मैं जानती हूँ डॉली कि आपने मजाक ही किया है, लेकिन आपका मजाक बड़ा प्यारा लगा. ऐसा मजाक तो कर सकती हैं आप. रंजीत मस्ताना का मैसेज आया है, तहकीकात फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं. मैसेज राय बरेली से लिख रहे हैं. इसके अलावा ये कौन है, इनका नाम है वरुण वार्ष्णेय अलीगढ़ के कौरियागंज से इनका मैसेज आया है. और गाना के साथ साथ ना इनको गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लग रही है. तो सर थैंक यू सो मच सर कि आज आपको मेरा प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है. और जो गाना आपने सुनना चाहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, यदि वो मिल जाता है मुझे तो मैं ज़रूर बजाने की कोशिश करूँगी. चूँकि आज काफ़ी गाने ऐसे रहे जो हमने सावन के ऊपर कह लीजिए या झूलों पे कह लीजिए, है ना, और बारिश के ऊपर हमने गाने बजाए हैं. तो कोशिश कर रही हूँ कि उसी तरह का आपकी पसंद का ये गाना मुझे मिल जाए. हालांकि मेरी प्रेफरेंस थी कि आज ज़्यादा हो गए हैं इसी तरह के गाने, है ना. तो आपने गाना सुना चाहे आया झूम के बसंत, राइट. तो वो गाना तो मुझे मिल नहीं रहा है, हालांकि मैं सोच रही हूँ, कई बार मैं बजा चुकी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ. इसके अलावा कुछ एक मैसेजेस और आए हैं हम तक, तो मैं जल्दी जल्दी उनका नाम लेना चाहती हूँ. और हम तो ओके, थैंक यू सो मच सर जो आपने लिखा है प्रदीप जी, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है उसे. और इसके अलावा ये किसका मैसेज था, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी का मैसेज आया था, और इन्होंने भी बहुत सारे गानों की चॉइस भेजी थी. लेकिन अब चलते चलते चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है मेरे पास, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े. लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से हमारे साथ रहिएगा. हमारा प्रोग्राम होगा आशियाना और ज्योतिका रहेंगी आपके साथ. फिलहाल रश्मि को दीजिए इजाज़त, नमस्कार.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ये हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश के पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए सम्मान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। और खेलों में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको की जोड़ी ने विमिल्डन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। स्वागत है आप सबका रेनबो डेस्टिनेशन में, जहां हर एपिसोड में हम निकलते हैं एक नए सफर पर। आज का सफर हमें ले जा रहा है इंडिया के उस कोने में जिसे प्यार से कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, केरला। सोचिए, सुबह की वो हल्की सी प्यारी सी बारिश, कोकोनट ट्रीज हवा में झूम रहे हैं, एक तरफ शांत बैक वाटर्स और दूसरी तरफ अरेबियन सी की लहरों की आवाज, कहीं दूर चाय के बाग, कहीं कथकली के रंग और हर मोड़ पर नेचर का एक प्यारा सा नया सरप्राइज। कहते हैं कि केरला सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है जहां लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है और हर पल को जीने का मन करता है। तो सीट बेल्ट की जरूरत तो नहीं है, बस इमेजिनेशन को फ्री छोड़ दीजिए ना। आज चलते हैं केरला की खूबसूरत वादियों में।

अनुपम रॉय फ्रॉम द मूवी पीकू। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ गाने सुनते हैं तो मन करता है सच्ची में कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं आपके लिए एक और वजह लेकर के आई हूँ आज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ केरला की। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि केरला आखिर पहुंचा कैसे जाए। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के आसपास, तो कोची, तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड़े के लिए डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट्स इजीली मिल जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से तो केरला की कनेक्टिविटी और भी अच्छी है, फ्लाइट्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है। जो लोग ट्रेन जर्नीज इंजॉय करते हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि केरला ना एक ट्रीट से कम नहीं है। कोंकण रेलवे का जो रूट है, इंडिया के सबसे सीनिक रेल रूट्स में से एक माना जाता है। विंडो सीट मिल जाए तो सोने पे सुहागा, मतलब वो जो डेस्टिनेशन है ना, वो सफर भी आपका डेस्टिनेशन से कम नहीं लगेगा। रोड ट्रिप लवर्स के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु के थ्रू ब्यूटिफुल हाईवेज अवेलेबल हैं, और केरला के अंदर ट्रैवल करना भी काफ़ी कन्वीनियंट है। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज और सेल्फ ड्राइव ऑप्शंस सब आसानी से मिल जाता है, तो प्लान करना चाहें तो आप कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप जब आंख बंद करते हैं और कहीं घूमने का प्लान बनाना चाहते हैं तो वो ऐसी कौन सी जगह है जो आपके जहन में आती है? अगर आप ब्लैंक हैं और अगर आपके दिमाग में अभी कोई जगह नहीं आई है तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। जी हाँ, आज हम रेनबो डेस्टिनेशन में बात कर रहे हैं केरला की। देखिए, केरला वैसे तो साल भर खूबसूरत लगता है लेकिन अक्टूबर से मार्च का जो ये वेदर होता है साइट सीइंग के लिए सबसे कम्फर्टेबल माना जाता है। अगर आपको मानसून और ग्रीनरी पसंद हो तो जून से अगस्त भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पेशली आयुर्वेदा रिट्रीट्स के लिए। और अगर आपके मन में है कि वहां जाकर हम क्या करें, क्या देखें, तो मैं बताती हूं ना। देखिए, मुन्नार के वो बहुत ही लैविश ब्यूटीफुल ग्रीन टी गार्डन्स, एलपी की फेमस हाउस बोट राइड, कोवलम के बीचेस और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसका क्या ही कहना। कोची का फोर्ट एरिया और चाइनीज फिशिंग नेट्स आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर नेचर लवर है तो वायनाड भी जरूर इंक्लूड करिएगा। हर जगह का अपना अलग मूड है और इसी वजह से केरला हर ट्रैवलर को अपना सा लगता है। प्लान करिए ना, मैंने तो बता दिया अच्छा मौसम कब है।

0: देखिए,
1: मैंने तो आपको कहा था ना कि मंजिल से बेहतर लगेगा रास्ता अगर आपने कोंकण रेलवे का वो रूट ट्राई कर लिया। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। और मैं, जैसा अभी मैंने अभी कहा कि मैं बात कर रही हूँ केरला की। देखिए, केरला के जो फ्लेवर्स हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। यहाँ का खाना सिंपल भी है और अनफॉरगेटेबल है। बनाना लीफ पर सर्व होने वाली ट्रेडिशनल जो केरला की सद्या है, एक एक्सपीरियंस। सी फूड लवर्स के लिए फिश करी, प्रॉन करी और करीमीन पोली चट्टू मस्ट ट्राई है वहां पे। तो ब्रेकफास्ट में अप्पम, पुट्टू और इडलियम, है ना, स्टू का टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा आपको वहां पर। अगर चाय के साथ कुछ स्नैक चाहिए तो बनाना चिप्स को तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, कोकोनट यहां सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं है, ऑलमोस्ट हर डिश की जान है।

देखिए, अगर आप खाने के साथ साथ केरला में आराम कर रहे हैं तो आराम के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि शॉपिंग को बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ से ऑथेंटिक स्पाइसेस, पेपर, कार्डमम, सिनेमन घर जरूर ले जाइएगा। कसावू साड़ीज अपनी एलिगेंट गोल्डन बॉर्डर के लिए दुनिया भर में फेमस है। मम्मी के लिए, बहन के लिए या अपनी वाइफ के लिए ले जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। आयुर्वेदिक ऑयल्स, हैंडमेड सोप्स, कॉयर प्रोडक्ट्स और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत पॉपुलर सुविनियर्स हैं यहाँ। और अगर मौका मिले तो कथकली या मोहिनी अट्टम का लाइव परफॉर्मेंस अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे। यहाँ कल्चर सिर्फ म्यूजियम्स में नहीं, लोगों की मुस्कान और रोज की जिंदगी में आपको दिखता है।

देखिए, केरला ट्रिप को और मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ छोटी सी टिप्स आपको बताती हूँ। कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स जरूर रखिएगा। रिलीजियस प्लेसेस पर डिसेंट ड्रेसिंग का ध्यान रखिएगा। हाउसबोट स्टे अगर प्लान कर रहे हैं तो एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा। UPI हर जगह ऑलमोस्ट यूज हो ही जाता है। और सबसे जरूरी, केरला को जल्दी जल्दी कवर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको सुकून से एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा केरला सफर यहीं तक। उम्मीद है आज के रेनबो डेस्टिनेशन ने आपको भी गॉड्स ओन कंट्री की एक छोटी सी झलक जरूर दिखाई होगी। अगर आप केरला जा चुके हैं तो उसकी यादें फिर से ताजा हो गई होंगी, और अगर अभी तक नहीं गए तो शायद आज के इस एपिसोड ने आपको थोड़ी सी प्रेरणा जरूर दी होगी। मैं ज्योतिका लेती हूं आपसे इजाजत। वक्त हो चला है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। इस धुन के

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा

0: कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो भागो जाओ रे अरे भागो रे अरे सिपाही आ गए अरे अरे मारे जाओ रे अरे यहां यहां
1: चुप रहो चुप रहो अरे यहां यहां अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: अब आया काबू महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धन नंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बड़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा,
4: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो,
4: चलो
1: सम्राट।
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: अरे

0: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: हम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। हमारा आज का विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या है उपाय और कैसे करें खुद को मोटापे से दूर ताकि हम रह सके स्वस्थ और तंदुरुस्त। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से अपने आज के इस खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस विषय पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित छाबरा, जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ, और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। अगर इस खास विषय से जुड़े आपके पास भी हैं सवाल तो आप हमें करिए ना कॉल, और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 01123421080 और 2342102। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 2342101080 और 2342102। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर निमी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू पूजा।
3: थैंक यू पूजा। और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सशक्त माध्यम पे इतना महत्वपूर्ण विषय हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सरल शब्दों में अगर हम समझें ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है।
2: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
1: जी।
2: और आप ये समझ सकते हैं कि इस समय ओबेसिटी इतनी प्रेवलेंट है
1: जी,
2: हालांकि पहले भी थी, बट इसका कंसेप्ट इस समय इतनी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब ओबेसिटी से रिलेटेड हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पता लगती हैं
1: जी।
2: तो हर इंसान चाहता है कि ये पता लगे कि वो सच में मोटा है कि नहीं। तो मोटापे की डेफिनेशन सही होना ज़रूरी है। बेसिकली हम मोटापे को BMI के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली हाइट और वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, बट इन जनरल अगर आपका BMI 23-25 है, आप कह सकते हैं रिलेटिवली ओके, बट बियॉन्ड 25 आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आ जाते हैं। बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 26.5 और 27। उसके बाद हमें इसको ओबेसिटी ग्रेडिंग की क्लासिफिकेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं।
1: जी जी। डॉक्टर निमी, आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगी?
3: पूजा, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अगर 5-6 साल पहले 24% लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा पाया जाता था, तो अब धीरे धीरे वो बढ़ के 30% से ऊपर हो रहा है। और शहरी इलाकों में तो आप सोचिए बिल्कुल एपिडेमिक ही आ गई है मोटापे की। अब जो है 42-43% लोग अपने तय सीमा से वजन से ज़्यादा हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है ये। और इसीलिए मैंने आपसे का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे।
1: जी जी। श्रोताओं, सुना आपने, डॉक्टर निमी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है जो है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। और आप हमें इस विषय पर कोई सवाल है, आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे नंबर हैं 01123421080 और 2342108 2। और व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लें 9868107070। डॉक्टर अमित, कौन कौन से कारणों से कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होता है?
2: बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
1: जी।
2: देखिए, ओबेसिटी का मतलब ये जरूर हमने बताया कि वेट गेन होना, एक वेट गेन की हमने लिमिट भी सेट कर दी
1: जी।
2: बट भी ये देखा जा रहा है कि इस समय जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दे आर द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा जीवन शैली
1: जी।
2: हम लोगों के पास ना तो रात में सोने का टाइम है, ना प्रॉपर रेस्ट का टाइम है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फूड टू ईट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और इस वजह से हमारे कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जैसे लेप्टिन, रेलिन, इनका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है। अदरवाइज और दूसरे हार्मोन्स हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दीज डेज।
1: इस पर हम सर आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे। जी जी जी।
2: अदरवाइज फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर्स, कुशिंग डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि नॉर्मली हम फाइंड आउट कि जब भी डायबिटीज ओबेस पेशेंट आता है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस आल्सो. जेनेटिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
1: इस पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे सर आपसे. जी एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले इनका कॉल ले लेते हैं सर.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: हेलो
4: जी, नमस्कार.
1: नमस्कार,
4: मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ.
1: जी
4: मेरे तीन क्वेश्चन है.
1: जी
4: पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर कोई बच्चा या बड़ा आदमी मोटा हो जाता है, मोटा खाने से नहीं होता है, लोग ये कहते हैं कि तुम केला खाओगे ये खाओगे तो मोटा हो जाओगे. मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज से के खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, तो उसका वेट कैसे कम किया जा सके, एक तो ये बताएं. नंबर दो, जो आज लड़कियां या लड़के 20-22 साल के हो जाते हैं, शादी के काबिल हो जाते हैं, वो अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो डाइटिंग करना क्या उससे वेट लॉस होता है, क्या शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्या उसके विटामिन लॉस होते हैं या नहीं होते हैं. और तीसरा क्वेश्चन ये है, जो आदमी 100 किलो से ऊपर होते हैं या 80-90 किलो से ऊपर हो जाते हैं और वो ऑपरेशन कराते हैं, और ऑपरेशन कराना क्या रिस्की है या रिस्की नहीं है, या ऑपरेशन कराना ठीक होता है. ये तीन क्वेश्चन.
1: जी हाँ. डॉक्टर साहब.
2: जय किशन जी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं बहुत ही शॉर्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ. पहला क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल जो पूछा कि ये जो बच्चे जो आजकल कुछ भी खा लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो हेल्दी फूड है वो हम सब बच्चों को बोलना चाहिए कि वो खाएं. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगेन एक्सरसाइजेस की कमी, स्पोर्ट्स का टाइम कम हो गया है, तो इस वजह से इनको कुछ भी खाने पे जल्दी वेट गेन करने लगते हैं.
1: जी.
2: तो इनको जो भी गुड फ्रूट्स दें, फाइबर रिलेटेड डाइट दें, और अच्छा फ्लूड इनटेक भी बहुत कम हो गया है, एंड दे टेक लॉट ऑफ फैट, फैटी फूड्स ऑल्सो. तो हमें बच्चों को ये करना चाहिए कि इन चीज़ों को मतलब फैटी फूड्स को या स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें. फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा बोलें.
1: जी जी.
2: रिगार्डिंग दो आपने अदर क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो नॉर्मली हम सभी लोग बोलते हैं कि विटामिंस रिलेटेड चीज़ें जैसे अच्छे से खाएं, जैसे मैंने भी बताया फ्रूट्स रिलेटेड. तो अगर आप वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा करते हैं और बिल्कुल न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं. फेस पे रिलेटेड जो झुर्रियों की बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट है आपका 150-200 किलो और उसमें आप 40-50 किलो कम कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है. बट आज की डेट में हम मेडिकल साइंस रिलेटेड बहुत ही मॉनिटर्ड ग्रेजुअल वेट लॉस कराते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ एंड हेल्दी, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है.
1: जी,
3: डॉक्टर अमित ने जो कहा उसमें तीन या चार कहिए शाश्वत सच मैं जोड़ देती हूँ अपनी तरफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट घटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. तो अगर आपके हाथ में है तो बढ़ने ही ना दीजिए. दूसरा ये कि क्रैश डाइट्स नेवर वर्क, कभी भी क्रैश डाइट काम नहीं करती है. थोड़े समय के लिए कर सकती है बट ज्यादा उसका अच्छा असर नहीं है. और तीसरा ये है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है कि बच्चे बैठे रहते हैं, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए.

0: और
1: जी
0: चौथा कि नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं ढंग से तो आप वेट नहीं घटा
1: जी
0: सकते।
1: इस पर मैम हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। मैम अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनमें मोटापे का क्या कारण होता है?
0: देखिए, जनरल कारण तो डॉक्टर साहब ने बताया है आपको। अब जहाँ तक
1: जी
0: महिलाओं की बात है तो मेरा कार्य क्षेत्र ही महिलाओं के बीच में है,
1: जी
0: 15 से 70 साल के बीच में। तो महिलाओं के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है कि उनको कुदरत ने उनके शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उनको कुछ फिजियोलॉजिकल अवस्थाओं से गुजरना
1: जी
0: पड़ता है
1: बिल्कुल
0: फॉर द सस्टेनेंस ऑफ यू नो द रेसेस। तो उनको मासिक धर्म भी होता है, उनको
1: जी
0: प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चे को दूध पिलाना होता है, फिर मेनोपॉज होता है, गर्भनिरोधक भी उनको लेना पड़ता है। तो ये
1: जी
0: सारी चीज़ें हार्मोन के साथ, यानी कि जो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं,
1: जी जी
0: उसके साथ काफ़ी खिलवाड़ करती हैं। कभी कोई हार्मोन ऊपर हो जाता है, कभी कोई नीचे हो जाता है, कभी उनको क्रेविंग्स होने लगती हैं तो वो बिंज ईटिंग करती हैं। प्रेगनेंसी में तो सब लोग उन्हें ठूस ठूस के खिलाते हैं, बच्चा हो जाता है तो उन्हें भूख ज्यादा लगती है, मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी भूख मर जाती है। तो भाई महिलाओं का तो हाल बेहाल है,
1: जी
0: लेकिन सब कुछ मैनेजेबल है अगर आपको अवेयरनेस हो।
1: तो सुना आपने, डॉक्टर निमी ने कहा कि सब कुछ मैनेजेबल है अगर आप अवेयर हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, और इसमें अगर आपकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो नंबर है 2342108 और 2342108। व्हाट्सएप के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। इस खास विषय पर बातचीत जारी रहेगी, पहले सुनते हैं ये गीत।

0: बस फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे खुद को मोटापे से रखें दूर ताकि हम रह सकें स्वस्थ और तंदुरुस्त। और इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा ओबेसिटी से बढ़ता है।
1: बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्वेश्चन है क्योंकि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है
0: जी,
1: ग्रेजुअली हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करने लगते हैं
0: जी।
1: और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जेनेटिक हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ सामने आ जाती है।
0: टाइप 2 डायबिटीज़
1: थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है
0: जी।
1: कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे वेट बढ़ता है तो वेट का डिपोजिशन भी होता है आर्टरीज में, तो दीज पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स
0: जी।
1: इसके अलावा वेट बढ़ने पे जॉइंट्स में भी इफेक्ट आता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है
0: जी।
1: और वेट बढ़ने से आपने देखा होगा स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी बोलते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: फिर ये फैट का डिपॉजिट होता है अलग अलग एरियाज में, जिसमें मोस्ट कॉमन एरिया है लिवर, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। पहले इतनी कॉमन नहीं थी, केवल बहुत ही ओबीस पेशेंट में हम लोग हमारे पास आते थे। अब इवन वी सी कि इंडियन पेशेंट में खास तौर से सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, मतलब फैट हमारे पेट में ज़्यादा जमता है एज कम्पेयर टू अदर एरिया।
0: इसका रीज़न क्या है सर?
1: हमारे जो जेनेटिक मेकअप इतना ज़्यादा प्रीडिस्पोज है
0: जी,
1: कि वी टेंस टू हैव द हायर डिपोजिशन ऑफ फैट ओनली इन द सेंट्रल पार्ट, जिसे हम विस्ट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये विस्ट्रल और सेंट्रल ओबेसिटी इस तरह वर्क करती है कि दे एक्चुअली कॉसेस द डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑल्सो।
0: ओके,
1: तो इसलिए ये देखा गया कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में, जैसे कि US में, UK में, वहाँ पे दे आर ऑलरेडी हैविंग वेरी हाई BMI, मोटे रहते हैं, पर कार्डिक प्रॉब्लम बहुत लेट होती है। हम लोग जिसको बोलते हैं बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बस सेंट्रली उसका वेट ज़्यादा है, दे आर एक्चुअली मोर प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हम लोग बहुत अर्ली फेज में इंटरवेंशन करना चाहते हैं ताकि जल्दी वो फैट रिड्यूस करके नॉर्मलाइज हो पाए
0: जी। डॉक्टर निमी, पेट फूलना, जैसे सर ने बताया, लगातार सांस फूलना, पेट का आकार बढ़ना, अत्यधिक थकान महसूस होना, ये भी ओबेसिटी के अलार्म साइंस में शामिल है, क्या कहेंगे आप?
2: डेफिनेटली ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है ये हम वेमेन में भी देखते हैं
0: जी।
2: और अगर आप शुरुआत से चलें तो ये कॉज एंड इफेक्ट दोनों है, यानी कि वेट बढ़ने से ओबेसिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से वेट बढ़ जाता है, तो इंसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। इट्स लाइक कैच 22 सिचुएशन, लाइक PCOD ही ले लीजिए
0: जी।
2: वजन का गेन करना PCOD का एक कारण भी है और एक उसका इफेक्ट भी है
0: जी।
2: आप हमेशा ये PCOD की पेशेंट को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना वजन घटाइए। अब यंग लड़कियां हैं, उस एज में नहीं होता पॉसिबल, तो हम फिर हम उनको बैठ के जब समझाते हैं कि देखिए ये जो फैट लेयर है यहाँ आपका हार्मोन कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बट समझ आ जाता है। इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके यहाँ यंग लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं जिनको आप PCOD के लक्षण देख रहे हैं, तो आप उनको हेल्दी खाने के लिए प्रेरित कीजिए, घर का बना खाना खिलाइए और उनको मूवमेंट के लिए इनकरेज कीजिए, जो कि इसका मेन स्टे है
0: जी। मैम, आपने PCOS की बात की, PCOD और PCOS में क्या डिफरेंस है, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके बारे में भी हमें बताइए कि ये मोटापा बढ़ाने में कितना सहायक होता
2: पूजा
0: है।
2: पूजा, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरी OPD में 10 पेशेंट्स आते हैं तो 3 या 4 केसेस ऐसे होते हैं जो या डायरेक्ट PCOD है, या PCOD की वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा, या PCOD की वजह से मेनोपॉज जल्दी हो गया है, एंड तमाम तरह की उसका बेसिक कारण PCOD होता है। और PCOD एक कारण नहीं है, एक सिंड्रोम है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, जो कि मोटापे का भी एक कारण बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको अगर हम शुरू में ही रिवर्स कर दें तो हम लॉन्ग लास्टिंग से रिकवरी पा सकते हैं। अदरवाइज हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ठहरने में, मेंटेनेंस में, बच्चे में भी इशूज आ सकते हैं, आगे चल के डायबिटीज़ हो सकता है। तो हम अपने लिसनर्स को डराना तो नहीं चाहेंगे, बट हाँ, PCOD का पूरी तरह से इलाज पॉसिबल है।
0: इसके लक्षण क्या क्या हैं?
2: सो PCOD में नॉर्मली एक्ने आते हैं फेस पे, फेशियल हेयर आते हैं, पीरियड्स लेट हो जाते हैं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, और और वजन बढ़ता है और
0: इरेगुलर पीरियड्स
2: हैं कि दो दो महीने तक नहीं

0: आ रहे हैं। और अक्सर हमने एक और बात देखी है, डॉक्टर अमित मेरे से सहमत होंगे, कि पीसीओडी केसेस में जब हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री, तो कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट डायबिटिक निकलता ही है। तो
1: उसकी वजह
0: इसका
1: से पीसीओएस पीसीओडी बढ़ता है क्या? हो सकता
0: डेफिनेटली उसका एक लिंक है
1: लिंक है जी
0: मैकेनिज्म का, जिसका कारण एक ही है दोनों का,
1: जी जी
0: लेकिन पीसीओडी फिर वो उजागर हो जाता है हमारी यंग लड़कियों में।
1: जी महिलाओं पर मैम। और जी जी सर बताइए।
2: इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे वेट गेन होता है एंड फैट सेल डिपॉजिट्स होते हैं, तो पीसीओडी का एक पार्ट है कि टेस्टो और ईस्ट्रोजन का जो लेवल और रेशियोज चेंज होने लगते हैं
1: हार्मोन्स के। जी
2: हार्मोन्स के, एंड दिस इज द मेन रीजन कि ये परसिस्ट करता रहता है। वेट रिड्यूस होने से वी विल रिड्यूस द फैट सेल्स, तो हार्मोन्स का चेंज ओवर रिड्यूस हो जाता है। और दिस इज अ वेरी राइट कि बहुत सारे पेशेंट जेनेटिक हिस्ट्री में भी डायबिटीज होते हैं, और पीसीओएस भी आगे चल के जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो भी डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं।
1: जी
0: मुझे कोविड के टाइम पे बहुत केसेस वर्सन हुए, क्योंकि बैठे रहे लोग, बाहर नहीं निकलना हुआ। सो अब जो है, अब उनके असर हम सामने देख रहे हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो।
3: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी
3: अभी जैसे मैम ने जिक्र किया कि वेट गेन करना इज इजियर देन लूजिंग द वेट,
1: जी
3: मगर मैम मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। मैं पिछले 6 साल से मेरा वेट कम हुआ है।
1: अच्छा।
3: और आई एम 53 नाउ।
1: जी
3: और 6 साल पहले मेरा वेट कम होना शुरू हुआ 58 से आई वेंट डाउन टू 39 एंड नाउ आई एम 45। इसके ऊपर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है।
0: ओके आप मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप फॉर्चुनेट हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पैथोलॉजी का एहसास हो रहा है। तो प्लीज़ अपने चेकअप कराएं। वेट घटना भी अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी हाइट और वेट के और उम्र के हिसाब से एक तय सीमा में ही रहना चाहिए। प्लीज़ अपने थायराइड लेवल्स चेक कराएं। आई एम श्योर आपने कराए होंगे, बिकॉज थायराइड जब ओवर एक्टिव होता है तो वजन जल्दी जल्दी बढ़ता है। और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिस पे डॉक्टर अमित प्रकाश डाल सकते हैं, बट इवन दैट इज नॉट हेल्दी। आपको जरूर इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए।
1: डॉक्टर अमित आप क्या कहेंगे?
2: सी, अगर वेट आपका पहले से ही रिड्यूस्ड है, वो मेंटेन है एंड यू वांट टू गेन वेट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। इन दैट सिनेरियो वी नीड टू वर्क आउट आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अदर चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। बट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं वेट, जैसे डॉक्टर निमी ने बताया कि डेफिनेटली थायराइड द मोस्ट कॉमन रीजन, बट अदर रीजन्स भी हैं, जैसे कि आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, विटामिन डिफिशियंसीज हैं, इवन एड्रिनल इनसफिशियंसीज आर ऑल्सो देयर, एंड कुछ लिवर एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो पूरा वर्कअप डेफिनेटली आपको करवाना
0: मेरे
2: चाहिए।
0: मेरे ख्याल से बुलीमिया और एनोरेक्सिया भी कारण हो सकते हैं।
2: या डेफिनेटली इफ दे आर रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट।
1: जी जी जी डॉक्टर निमी, हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाएं अलग अलग उम्र में अलग अलग बदलावों से गुजरती हैं, जैसा आपने बताया भी, ये कितना असर करता है वजन बढ़ाने में? और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि गर्भावस्था संबंधी समस्याएं होती हैं जो ओबेसिटी से, उन दोनों के बारे में बताइए।
0: जी देखिए, गर्भावस्था में नेचुरली एम्फेसिस किया जाता है कि आप दो लोगों के लिए खाइए, लेकिन वो दो लोग में से जो दूसरा इंसान जो भी आपके पेट में पल रहा है वो तो मुश्किल से 1-2.5 किलो का है, तो उसके लिए आपको डबल द कैलोरी नहीं खानी। आपको क्वालिटी डाइट लेनी है ताकि बच्चे के अंग अच्छे से बने, उसमें कोई डिफिशियंसी ना हो, आपको एनीमिया ना हो। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि आपकी जो है 2000 से 4000 कैलोरी कर लीजिए। तो हमारे ना रेफरेंसेज ही गलत हैं शुरू से। हम ये सोचते हैं प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया, कोई बात नहीं, सबका बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी रेफरेंसेज रीडिफाइन करनी होगी कि प्री प्रेगनेंसी लेवल पे अगर हम वापस ला सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज लाती हैं, तो क्यों नहीं, क्योंकि उसके फायदे आप आगे वाली उम्र में जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा कहना है।
1: डॉक्टर निमी, अगर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वजन कंट्रोल में रहे और जो प्रेगनेंसी की वजह से वजन बढ़ा है वो भी कंट्रोल?
0: पूजा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है, आपको जब आप लैक्टेट करते हैं, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, एक तो पहली बात दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए नहीं, वो माँ के लिए भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज उसकी यूट्रस वापस अपनी शेप में आ रही है, उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व होके मिल्क प्रोडक्शन में उसका कैलोरीज लग रही है। तो उस स्टेज पे अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक को थोड़ा कम कर लें, अपनी पोर्शन को कंट्रोल कर लें, तो हो ही नहीं सकता कि वापस आप अपने नॉर्मल वेट पे ना आए। हाँ, थोड़ी बहुत टोनिंग की जरूरत है, बिकॉज लैक्सिटी हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स की, तो थोड़ा बहुत वर्जिश आप करेंगे तो वापस उसी शेप में आ सकती हैं, और लोग आते हैं।
1: जी।
0: तो जैसे पहले बोलते थे 10 से 12 किलो आपको गेन करना है, नहीं, अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो प्रेगनेंसी में आप 8 किलो 6 किलो 7 किलो में भी आप अच्छे से हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर वापस अपने शेप में आ सकती हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अलग अलग जो स्टेजेस हैं महिलाओं के उनकी एज के, उनमें अलग अलग तरह के बदलावों से वो गुजरती है, कितना असर करता है वजन बढ़ाने में?
0: देखिए मेनोपॉज में हमने देखा, और आजकल हो क्या रहा है कि मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, लाइक 45, 44, 43 पे मेनोपॉज हो जा रहा है।
1: तो इसका वही लाइफस्टाइल
0: है, हार्मोनल चेंजेस हैं, पीसीओडी है, बिकॉज ओवरीज जो है जल्दी अपना काम बंद कर रही हैं, सो इट्स वेरी अलार्मिंग। बट इस पे फिर कभी एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मेनोपॉज में यूजुअली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो फैट डिपोजिशन ऑन द थाइज, ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आता है। और अगर आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, अगर आपकी फैट पॉकेट्स ही बनी हुई है उस एरिया में, तो फैट जाके वहीं पे बढ़ने लगता है, तो ये बहुत कॉमन वो है। बट देर आर वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल इट।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज हम जान रहे हैं हमारे खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। अगर आपके पास भी है ना कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल, जिसके लिए हमारे नंबर हैं 2342-1080 और 2342-1082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9868-107070। डॉक्टर साहब आप दोनों से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं हमें। अब एक गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और ओबेसिटी से जुड़े सवालों पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी और इस पर हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। मैम, हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो खान पान हो गया है जैसे फास्ट फूड, क्या ये मोटापे का मुख्य कारण है? और दूसरा, वर्कआउट ना करना, क्या ये भी ओबेसिटी का ही मुख्य कारण है?
2: अमित जी, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिस तरह का खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है या फिर उसको आपको सिग्नल दे रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम एज अ रूल ऑफ थंब अपने पेशेंट से कहते हैं कि 80% घर का बना खाना खाइए। अब आप मुझे बताइए अपने कलीग्स में देख के कि कौन लोग ऐसे हैं जो 80% खाना घर का बना खाते हैं
1: जी।
2: और हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और इस नूडल्स वगैरह को क्यों हम दोष देते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में भी जलेबी, रसगुल्ले, कचौड़ियाँ, समोसे ऐसी चीज़ों की फरमाइश की जाती है। तो ये हिंदुस्तानी जंक फूड भी अच्छा तो नहीं है। और एक ही जगह पर बैठे खाना और उसके बाद उसको स्पेंड ना करना, उसकी कैलोरीज को स्पेंड ना करना, ये तो कहीं ना कहीं आपको असर दिखाएगा ही। तो ये तो जाहिर सी बात है।
1: जी जी जी। मैम, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती हैं कि डॉक्टर, फैटनेस कुड बी ऑफ टू रीजन इन वुमेन। फर्स्ट इज ड्यू टू जंक फूड एंड सेकेंड ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस। बट ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, हाउ द फैटनेस रिफ्लेक्ट्स इन द बॉडी एंड विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी?
2: देखिए, जंक फूड की जहाँ तक बात है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले दो खाने हैं। तो अगर आप कार्ब्स खा भी रहे हैं तो आप उन खानों को खाइए जो आपके शरीर में कम घुलते हैं
1: जी।
2: और मैं तो देखिए, मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप अपने खाने में से कार्ब्स को कम ही कर दीजिए। और अगर खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट के बाद चलना ज़रूर है, लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप अगर खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं या सो जाते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैट ज़्यादा होता है
1: जी।
2: तो आप 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लें, खाना जल्दी खा लें, तो वो आपको चर्बी के तौर पर नहीं लगेगा
1: जी।
2: एक सिंपल सा हैक है, वो आप अपना सकती हैं। और प्रोटीन, प्लीज़, मैदा से बनी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको जहर समझ के छोड़ दीजिए। चीनी से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए बड़ा बड़ा अपने सामने, चीनी एक तरह का जहर है, मैं चीनी नहीं खाऊंगा। ये बहुत एक्सट्रीम लग रहा है बट हाँ ऐसा है, चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब जितने कोल्ड ड्रिंक, जितने जूसेस आप सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, नहीं, उनको छोड़ दीजिए। प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। और प्रोटीन का बड़ी मज़ेदार वाक्य सुना आती हूँ पूजा में। एक पेशेंट से मैं कह रही थी कि देखिए प्रोटीन खाइए, तो बोली प्रोटीन पाउडर तो बड़े महंगे होते हैं। अरे भाई, मैं पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके किचन में जो खाना बनता है उसमें जो प्रोटीन है उसको खाइए। दालें हैं जिस तरह से, दूध से बनी चीजें हैं, और जो मोटा अनाज है उसमें भी प्रोटीन होता है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोटीन के बारे में

0: जानकारी कम क्यों है?
1: जी हाँ जी, एक्चुअली प्रोटीन नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाने में खाते हैं वो नॉर्मली प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है, जैसे लेट्स सपोज 100 kg ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड
0: जी
1: अराउंड 100 to 125 और 150 ग्राम, बट हम लेते नॉर्मली प्रोटीन कम है क्योंकि हमारी हैबिट है कि कुछ लोग तो एग नहीं खाते हैं या फिर कोई दाल नहीं खाते हैं. तो ओवरऑल हमें एक प्रॉपर प्रोटीन बेस्ड डाइट का एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए एंड शुड इंक्लूड मोर ऑफ दैट.
0: जी
1: जब ये मिसिंग हो जाता है, जैसे पर्टिकुलरली जो जिम गोइंग पर्सन या जिनको बहुत हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन ऐड ऑन द एक्स्ट्रा प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड.
0: जी डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से लिख रही हैं कि वो डायबिटिक और थायराइड पेशेंट हैं, उनका वज़न जो है 48 या 49 kg ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, क्या ये ठीक है? आप इन्हें एडवाइस
1: या
0: करें।
1: ऑल्दो
0: जी
1: इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई है,
0: जी
1: बट हम ये मान के चलते हैं कि 49-48 तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं
0: जी
1: है.
0: जी
1: और डायबिटीज को थायराइड पेशेंट में खास तौर से हम वेट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, इनफैक्ट वी ट्राई टू मेंटेन द वेट और स्लाइटली रिड्यूस इट.
0: जी
1: तो ये इनके लिए अच्छा है, लेकिन जब कभी ये वेट गेन करेंगी,
0: जी
1: जो हो सकता है इनकी शुगर और थायराइड में डिस्टर्बेंस आए, तो दे शुड ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी वेट,
0: जी
1: तो दैट विल बी गुड फॉर हर.
0: डॉक्टर साहब, प्रवीण हजारिका हमें गुवाहाटी असम से लिख रहे हैं कि ये इनका वेट 80 kg है, इनकी हाइट है 5 feet 10 inches, और ये रोज़ सुबह मॉर्निंग में 40 minutes वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या करें?
1: हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया अपना हाइट एंड वेट, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है अराउंड 72-75 वेट इनका होना चाहिए. तो इनको 3 to 4-5 kg का मैनेज करना है. देन
0: जी
1: डेफिनेटली फर्स्ट थिंग जैसे हम सभी पेशेंट को बोलते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड देन लेटर ऑन हम फिर कुछ मेडिकेशन की बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या किया जाए. बट
0: जी
1: फॉर हिम, बिकॉज अभी इनको 5-6 kg वेट रिड्यूस करना है, ही शुड जस्ट वर्क अप अबाउट द कैलोरीज जो ये ले रहे हैं.
0: जी
1: कभी कभार जंक कैलोरीज हम लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करते हैं, बट इन बिटवीन कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको हम कभी कैलकुलेट या करते ही नहीं अपने रूटीन
0: जी
1: में.
0: जी
1: तो ये सब चीज़ें हटाएं और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है 6 meals a day, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज़ रिक्वायर्ड. आप 8-8:30 ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करिए, अराउंड 11 o'clock फ्रूट्स, 1-1:30 लंच, 4 o'clock माइल्ड फ्रूट भी ले सकते हैं, 6 tea and 8:30 डिनर. इफ़ यू
0: जी
1: टेक ऑल दिस तो इश्यूज नॉर्मल नहीं आते हैं.
0: जी हमारे
1: और
0: साथ एक कॉलर है कॉल लाइन
1: जी
0: पे, डॉक्टर साहब, अनिल हमें गुरुग्राम से लिख रहे हैं कि इनके पेट के ऊपर काफ़ी फैट है, उसे ये कैसे कम करें, उसके बाद हम अपना कॉलर लेते
1: यार
0: हैं। जी
1: देखिए, कोई भी फैट का लोकेशन
0: जी
1: हमारे वेट रिडक्शन के उस पर नहीं डिस्टर्ब करता है. जब भी हम फैट रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल ही फैट रिड्यूस होता है, बट कुछ चीज़ें जैसे पेट के ऊपर का फैट, जैसे हमने बताया विसरल फैट या ये जो भी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कोर एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे कि रनिंग कर सकते हैं,
0: जी
1: इवन कई तरह के ऐसे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, देन इट विल रिड्यूस इट. बट
0: जी
1: केवल ये करके नहीं होगा, डाइट के साथ ओवरऑल एक्सरसाइजेस भी करनी
0: डॉक्टर
1: पड़ेंगे.
0: निमी, आप कुछ कह रही
1: मैं
0: थी?
1: ये कह रही थी पूजा कि माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पानी के अलावा जिसमें कैलोरी ना हो।
0: जी
1: अगर आप 2 चम्मच नमकीन आपने खा ली और आपको ये कॉग्निसेंस ही नहीं है कि मेरे अंदर 80 कैलोरी चली गई, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं।
0: जी
1: कुछ भी खाए माइंडफुल होके खाए, चाहे आपको लोग ये कहे बड़े ऑब्सेसिव हो गए हो, बहुत ध्यान रख रहे हो, कुछ भी ताना दें, लेकिन शरीर तो आप ही का है
0: ज़रूरी है,
1: ना,
0: बहुत
1: आप ही के
0: ज़रूरी है।
1: अंदर जा रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: तो प्लीज़ बी माइंडफुल।
0: हाँ ज़रूरी है बहुत, वो हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए।
1: जी
0: मैम एक कॉलर है कॉल लाइन पे, हेलो मैम, लगता हमारा कॉलर से जो कॉल था कट गया है। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि तनाव और हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं वो मोटापे का कारण होते हैं, क्या
1: यस यस,
0: कहेंगे आप?
1: तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था
0: जी
1: कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर स्ट्रेस किसी को है तो हमारे हॉर्मोन्स का डायरेक्शंस एंड लेवल्स रेशियो सब चेंज हो जाते हैं.
0: जी
1: बिकॉज वो स्ट्रेस आपका इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो
0: जी
1: सकता है, लाइफ स्टाइल चेंज ओवर ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है. कुछ लोग स्ट्रेस को ये समझते हैं कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो स्ट्रेस है,
0: जी
1: बट कई बार डिसीज़ भी एक स्ट्रेस है. कई बार आपका जैसे मैंने बताया खाने पीने का टाइम नहीं है, बॉडी को वो भी स्ट्रेस लगता है.
0: जी
1: तो जब भी ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं.
0: जी
1: हार्मोन डिस्टर्ब का मतलब कि जो हम लोगों का वेट या जिसे कहते हैं कि फैट सेल्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके इंसुलिन्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके ओवरऑल डे टू डे लाइफ स्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो या तो उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं.
0: जी
1: तो जिस वजह से हमारा वेट गेन होता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते
0: जी
1: हैं. तो दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट वी शुड फोकस मोर ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट एट द सेम टाइम इक्वली. मे बी आई शुड से कि अगर मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं ओबेसिटी को लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि 25% टाइम हम थोड़ा स्ट्रेस रिडक्शन में भी उसके साथ
0: जी
1: बात करें.
0: एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पे. हेलो,
2: नमस्कार.
0: नमस्कार.
2: मेरे दो सवाल हैं सर से और मैम से कि एक तो कि वेट लूज करने के लिए क्या जिम ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि जिम आप कर रहे हैं उसके बाद जिम करना छोड़ देते हैं तो वेट दोबारा से आप वेट गेन दोबारा से कर लेते हैं. और दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम जैसे वीडियोज में या रील्स में या कहीं पढ़ते भी हैं कि एक इंसान ने एक महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक महीने में थ्रू डाइट या एक्सरसाइज 10 किलो वजन कम किया जा सकता है, या फिर महीने में कितना वजन हम कम कर सकते हैं जो बॉडी के लिए सही रहता है? यही दो क्वेश्चन है.
3: सो देर इज़ नो एक्सप्रेस सोल्यूशन टू वेट लॉस. बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट और बहुत ज़्यादा जल्दी वेट जो गिरता है वो हेल्दी नहीं होता है
0: जी.
3: मेरे ख्याल से 3 से 3.5 किलो मैक्सिमम.
1: या या या आई विल से लाइक दैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इवन इफ अगर हम लोग ओबेसिटी मेडिकेशन या जब भी वेट मैनेजमेंट करते हैं तो ये फर्स्ट रूल है कि हमें वेट लॉस बहुत फास्ट नहीं करना
0: जी.
1: अगर हम वेट लॉस बहुत फास्ट करते हैं तो कई कॉम्प्लिकेशन लाइक कोलेसिस्टाइटिस और इवन बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं
0: जी.
1: तो इसको हमें बिल्कुल सेफ हेल्दी वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट में, जैसे मैडम ने बताया, 3 to 4 kg हम नॉर्मली सोचते हैं. मैट मैक्स आप 5 kg जाना चाहिए
0: जी.
1: जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक मंथ में इतना हो सकता है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि द पर्सन इज डूइंग कितना वो डाइटिंग कर रहे हैं. कई लोग यू कहते हैं नॉन मेडिकल डाइटिंग भी करते हैं
0: जी.
1: जितना उनको नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, या फिर ओवर एक्सेसिव जिमिंग करते हैं जिसमें कि वो अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मसल्स पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो इनिशियली शुरू में वो वेट लॉस कर सकते हैं
0: जी.
1: बट लॉन्ग रन में वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इवन वो फैटीग ज्यादा फील करते हैं.
0: डॉक्टर साहब, जैसे पूछा गया अभी जो कॉलर थे, उन्होंने पूछा कि जिम करते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो वेट बढ़ जाता है, क्या ये सही है या एक मिथ है?
3: देखिए, जिम के बारे में मेरे बहुत एक्सट्रीम व्यूज हैं, तो आपने ये गलत टॉपिक छेड़ दिया. मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, वेट लॉस करना और वेट मेंटेन करना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, और ये जो जिम फिनोमिनन है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है. आप अपनी दिनचर्या में जितने कदम चलती हैं या आप अपनी दिनचर्या में कितनी स्ट्रेचिंग, कितना वेट बेयरिंग या अपनी ही बॉडी का वेट बेयर करके जो घर में करने वाली एक्सरसाइज है वो करती हैं, वही काफ़ी रहता है
0: जी.
3: अगर आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करके अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें. जिम जाना फेजिक होता है, ठीक है, चले गए, टोन्ड अप हो गए, उसके बाद आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा. हर टाइम आप जिम में नहीं बैठे रहेंगे, और महिलाओं के लिए ट्रस्ट मी, जिम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है. सो प्लीज़ कंसिडर इट साइड ऑप्शन, बट घर में आप अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान
0: जी. जी डॉक्टर अमित, मेरे आपसे सवाल है, आपकी लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो कौन सी गलतियां हैं जो शरीर में वसा के जमाव और मोटापे की वजह बनती है, और इससे बचाव क्या है, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी में?
1: यस जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
0: जी. जी,
1: ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कुछ जाने अनजाने में चीज़ें ऐसे करते हैं जिसे हमें नहीं लगता कि उससे जो है हमारे वेट पे असर पड़ता है, बट वो असर पड़ता है. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपका स्लीप कितना टाइम. अगर आपका स्लीप ड्यूरेशन बहुत कम है, नॉर्मली हम चाहते हैं कि 7 to 8 hours होना चाहिए, बट एटलीस्ट 7 टच करना चाहिए
0: जी.
1: अगर आपका स्लीप कम है, डेफिनेटली आपके स्ट्रेस फेज बढ़ता है. सेकेंड फेज होता है आपका ईटिंग टाइम कब शुरू होता है. अगर आप बहुत लेट खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है. लाइक आई सेड अर्लियर, ट्राई टू टेक ब्रेकफास्ट अर्लीस्ट एज पॉसिबल. इफ यू सी अवर विलेजर्स ऑल्सो, दे यूज टू ईट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज अ वेरी गुड रीजन कि वो रिलेटिवली हेल्दी और हैप्पी रहते हैं. डाइट को बहुत एक साथ एक्यूमुलेट ना करें, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. इससे बॉडी को मैनेज करने में बहुत ईजी रहता है. एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ तक आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, आजकल हमारे पास जैसे कि पहले हम डाइट एंड एक्सरसाइज तो सभी लोगों को पता ही है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमारे पास एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस हैं जिसको हम GLP या GIP बेस्ड थेरेपीज बोलते हैं, और इसके लिए हम हर एक को नहीं दे सकते हैं, बट उसके लिए हम उसको एलिजिबिलिटी उसकी वर्कआउट करते हैं वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर दैट थेरेपी और नॉट। बट अगर आप उस थेरेपी को देते हैं तो वेट लॉस होता है, इट शुड बी वेरी गाइडेड एंड मेडिकेटेड।

0: जी
1: प्रॉपरली
0: जी जी
1: एंड वी कैन रिड्यूस इवन अ वेट लॉस ऑफ 20-25% ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मंथ्स टू ईयर ऑल्सो. तो जिस पेशेंट को इतनी रिक्वायरमेंट है 10-20%, वैसे इन जनरल अगर आप 10-15% वेट लॉस करें तो इवन प्री डायबिटीज़ नॉर्मल हो सकता है और जो डायबिटीज़ है उनकी मेडिसिन भी हाफ हो जाती हैं.
0: जी जी
1: तो एवरी वन शुड फोकस ऑन 10-15% वेट लॉस एंड विच कैन बी डन. ये इंजेक्शन जिसके बारे में दो बस पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन को वंस ए वीक लिया जाता है. ये इंजेक्शन बेस्ड होता है, ऑल दो ओरल थेरेपी भी है बट नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये अभी अप्रूव नहीं है. नॉन डायबिटिक पेशेंट इंजेक्शन ले सकते हैं वंस ए वीक, देर वो ग्रेजुअली दिया जाता है. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम नॉजिया वॉमिटिंग होती है, वी कैन मैनेज विद दैट पार्ट ऑल्सो, बट ग्रेजुअली विद प्रॉपर अप डोजिंग ऑफ दिस मेडिकेशन वेट लॉस को भी अचीव किया जा सकता है. और इसको विद द टाइम पेशेंट ऑल्सो मैनेज करते हैं. लेट सपोज 80 kg पर्सन मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, लेकिन जब वो 5 kg, 3, 4, 5 kg रिड्यूस करता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ही कैन मेंटेन द वेट लॉस फॉर लॉन्गर टाइम.
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल भी.
1: यस यस.
2: हेलो.
0: हेलो.
2: हाँ, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
0: जी जी.
2: पहले सबको नमस्कार.
0: जी
1: जी.
2: अच्छा, मेरे 2-3 सवाल है मैडम. एक तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी है, मतलब इट इज सेड दैट कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए. आप कोई आदमी मोटा है और उसकी लाइफ स्टाइल भी मतलब ऐसी है तो क्या उसकी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होगी पर मतलब 1 ग्राम पर बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट. और दूसरा सवाल ये है कि मैडम ये जो BMI हम लोग ओबेसिटी को मेजरमेंट के लिए लेते हैं
0: जी,
2: उसमें वो कहाँ तक रेलेवेंट है? जैसे अभी किसी का BMI ज्यादा है, देखिए मतलब 25 से ज्यादा है, 30 है, लेकिन उसका मसल मास ज्यादा है और फैट मास कम है, तो क्या वो भी ओबीस माना जाएगा?
0: जी,
2: और एक छोटा सा मैडम तीसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बोला जाता है कि डिनर आप अवॉइड कीजिए या शाम को सनसेट से पहले पहले खा लीजिए, तो ये क्या हर के लिए एप्लीकेबल होता है मतलब वेट लूज करने के लिए? थैंक यू.
3: इसमें से एक सवाल का जवाब तो मैं दे देती हूँ सर, कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग अवस्थाओं में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है. अगर आपके यहाँ बढ़ता हुआ बच्चा है जिसका विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, और लड़की या लड़का है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर आपके यहाँ गर्भावस्था किसी महिला को है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर कोई वियर एंड टीयर हुआ है, कोई किसी बड़ी बीमारी से गुजरा है, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. बाकी टाइम पर 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट ठीक
1: मेजर आपने बताया. जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि BMI रिलेटेड पार्ट, कि बिल्कुल सही है, आजकल BMI अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो BMI के नियर बाय 20-25-7 हम लोग वेस्ट हिप रेशियो भी लेते हैं. इन दैट सिनेरियो भी हमने ये देखा गया है कि जो पेशेंट उतना नहीं लगता है जिसका BMI, जैसे इनका मसल मास ज़्यादा है, तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट से जैसे डेक्सा स्कैन से या इवन कुछ स्पेशल अलग टेस्ट भी आते हैं जिसे हम फैट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, एंड विद दैट वे वी कैन स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट.
0: डॉक्टर निमी, बात अगर हम जेनेटिक्स के करें यानी अनुवांशिक कारणों की, तो क्या ये जरूरी है कि अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में मोटापे की संभावना बढ़ जाती है? और कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे अधिक वजन के साथ पैदा होते, तो क्या ऐसे बच्चे आगे चलकर ओबेस हो सकते हैं?
3: हाँ और ना, दोनों ही.
0: देखिए,
3: अनुवांशिक फैक्टर्स तो होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ फैट डिस्ट्रीब्यूशन की जेनेटिक्स होती है वो आती है बच्चों में, तो उनकी फैट पॉकेट्स एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं या एक्सेस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्क जो है एनवायरनमेंट से होता है, बिकॉज उनके परिवारों में फिर उसी तरह के गरिष्ट खाने खाए जाते रहे होंगे, कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूटरी रहा होगा. तो अगर आपकी फैमिली में अनुवांशिक ओबेसिटी है तो भी आप उसे जान के उसको कंट्रोल कर सकती हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं. पूजा, मैं यहाँ पे ना भूख और वजन का संबंध समझाना चाह रही थी कि जब लोगों को भूख लगती है, ये जरूरी नहीं है कि उनका शरीर उनसे एनर्जी, कैलोरी या विटामिन मांग रहा है. ये इसेंशियली मेंटल फिनोमिनन है, वो घरेलिन, लेप्टिन, इस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं. तो भूख लगना एक इमोशनल और मेंटल फिनोमिनन है, तो अगर आप उस लेवल पर काम करें कि भाई मैं खाने के साइड से आपको भूख लग रही है, देखने से, स्मेल से आपको भूख लग रही है, तो भूख को जैसे धीरे धीरे आप चबा रहे हैं, या भूख को सेशियटी जो होती है, जो संतुष्टि होती है, वो आप अपनी तरह से, जैसे एक कटोरी दाल ले ली, आराम से बैठ के खाई, आपको लगा जैसे आपने पूरा खाना खा लिया, तो उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो तो इंसान अपने लिए ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं बता सकता।
0: जी जी, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं कॉल इनका भी। हेलो
4: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
4: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहे हैं।
0: जी
4: नमस्कार डॉक्टर साहब, एक हमारे परिचित हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो हफ्ता 10 दिन उनको लिक्विड दिया गया और नाक के थ्रू, तो उनका वेट काफी कम हो गया था, उनकी पैंटें लूज हो गई थी, तो ये क्या एक ट्रीटमेंट के कारण ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने लिक्विड ही लिया 10-12 दिन तो इस कारण से हुआ। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज होने वाले को क्या हार्मोन्स में चेंजिंग होते हैं कुछ, ये जैसे कि कुछ उनको शारीरिक चेंजिंग आते हैं, इसके लिए मोटा आदमी या पतला आदमी दोनों को ही ऐसे
1: मैं आपकी बात
0: जी जी जी जी देखिए डॉक्टर साहब, आपने हार्मोन चेंज के बारे में तो बता ही दिया है, बिल्कुल।
1: लिक्विड वाली बात को लेके ये है कि वो नॉर्मली आपकी जिस कंडीशन की वजह से ऑपरेशन हुआ है, उस समय कुछ समय लिक्विड देते हैं, तो कैलोरीज को बहुत हाई नहीं रखते हैं, तो दिस इज नॉर्मल ऑल्सो कि सम टाइम आफ्टर सर्जरी पेशेंट में लूज वेट, बट वो ग्रेजुअली वो अपने आप पिकअप कर लेता है कैचअप वेट।
0: जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, और क्या है उपाय इससे बचने के?
3: स्ट्रेस इटसेल्फ इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द हार्मनी ऑफ द हार्मोन्स। इसके अलावा ऑफकोर्स वो कम मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो एक्सरसाइज करने में, मूवमेंट करने में कम मोटिवेटेड होते हैं, प्लस एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हमने देखा है वेट गेन होता है, तो ये मल्टी फैक्टोरियल ही है। नींद नहीं आती है लोगों को तो वजन बढ़ जाता है, तो सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी इस हिसाब से हैं। तो ओबेसिटी जो है मल्टी स्पेशलिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे साइकाट्रिस्ट का भी रोल आता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का आता है, बेरियाट्रिक सर्जन का आता है, सभी इसमें इन्वॉल्व है।
0: डॉक्टर साहब, नींद की कमी या नींद से जुड़ी परेशानियां भी मोटापे का कारण होती है, क्या है बचाव के उपाय?
1: बचाव का उपाय नींद ही है
0: जी, मगर कई बार नींद नहीं आती।
1: कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप 7 डेज में एटलीस्ट 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज आपकी स्लीप प्रॉपर हो
0: जी।
1: और उसको आप स्लीप मेकअप करना जरूर चाहिए, बिकॉज ये इस पार्ट ऑफ स्ट्रेस, लाइक आई सेड, कुछ लोग स्ट्रेस दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, तो स्लीप एक्चुअली गिव्स यू इनविजिबल स्ट्रेस इन योर बॉडी।
0: जी डॉक्टर निमी, हमने महिलाओं की तो बात की, लेकिन अब पुरुषों की बात कर लेते कि हार्मोन्स का बदलाव पुरुषों को कैसे ओबेसिटी का शिकार बनाता है।
3: पुरुषों में अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, कुछ तो जनरल हैं जैसे थायराइड है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो तो सबके जनरल ही हैं।
0: जी जी जी।
3: लेकिन पुरुषों में यकीन मानिए फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी कम देखने को मिलती है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, लेकिन हाँ अगर उनकी दिनचर्या बिल्कुल ही अनहेल्दी है तो फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी कहाँ, वो जाके फिर कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। और मैंने देखा है अल्कोहल इनटेक ऑल्सो इंक्रीजेज ओबेसिटी को बढ़ाती है, तो सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ध्यान में रखने चाहिए। ओबेसिटी से आप सिर्फ ऑब्सेसिव लेवल पर लड़ सकते हो, सिर्फ लाइटली आप सोचो हाँ ठीक है वजन है कट जाएगा नहीं क्या करना है, वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इतना हम डरा दें कि आप अगले दिन से अपने वजन पर चेक रखना शुरू कर दें, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू गाइड।
0: अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बहुत ईजिली हम
3: जी
0: कर सकते हैं कंट्रोल वेट। डॉक्टर साहब,
1: एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप वेट लॉस के लिए प्लान करें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मत प्लान करिए
0: जी,
1: आप ये सोच के चलिए कि 6 months to 1 year मेरी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी
0: जी।
1: वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप 1 kg to 1.5 kg पर मंथ रिड्यूस कर पा रहे हैं तो यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक ए विनर फॉर द फर्स्ट मंथ, गिव योर सेल्फ ए रिवॉर्ड एंड देन मूव फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे अगर आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आप 1 kg भी रिड्यूस करते हैं तो इन ए ईयर यू विल रिड्यूस 12 kg, विच इज़ रियली वेरी रिमार्केबल। और अब हम 2 सालों बीत जाते हैं और एक एक दो दो किलो भी नहीं कम होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी, ये जो चीट डाइट होती है ना वो कितनी खतरनाक होती है, कई बार मैं भी करती हूँ।
1: चीट डाइट के बिना तो कोई भी इंसान रह नहीं सकता है, बट येस वंस यू डू दिस एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे यू डू अ गुड एनफ एक्सरसाइज टू न्यूट्रलाइज योर कैलोरीज।
3: दो तीन चीजें हैं, अगर आपके यहाँ यंग बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज कीजिए. शुरुआत से ही माँ बाप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रेरित करते हैं. दूसरी बात, अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज कीप अ वेइंग बैलेंस. हर रोज आप अपना वजन लीजिए, हर दूसरे दिन लीजिए, लेकिन जहाँ आधा किलो एक किलो बढ़ा, आप प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स. और तीसरी बात, प्लीज एक घंटा या 45 मिनट से ज्यादा बैठे मत रहिए. सिटिंग इज अगेन अनदर

0: स्वास्थ्य से जुड़े डूज एंड डोंट्स क्या है आप दोनों से? जी
1: आई वुड ऑन अ लाइट वेन से कि विटामिन एम एंड विटामिन डी, विटामिन एम एंड विटामिन पी आपने नहीं सुना होगा, ए बी सी डी सुना होगा, एम इज मूवमेंट एंड पी इज प्रोटीन
0: जी,
1: राइट इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और ऑब्सेसिव लेवल पे दीजिए, शुरुआत से दीजिए, लोगों को प्रेरित करिए और अगर वजन बढ़ भी गया है तो एक बार अगर आप घटा लेते हैं उसको मेंटेन करिए।
0: जी जी डॉक्टर,
2: मैं बस लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें आप, तीन चार चीज़ें खुद भी कर सकते हैं।
0: हाँ जी।
2: एक तो स्टेप्स लेवल पे भी आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स कवर अप करने की कोशिश करिए थ्रू आउट द डे, वो आप इवन ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो इवन यू कैन वॉक हेयर एंड आउट, उसमें बैठे बैठे ना रहें। टाइमली आप फूड जरूर खा लीजिए, अगर टाइमली नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स अदर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक स्लीप पैटर्न, और कोशिश करिए अगर डेली 1 आवर आप वॉक कर पाते हैं टू सम आवर, नॉट स्पेशली इन द मॉर्निंग, एनी टाइम इन द इवनिंग ऑल्सो, देन आई थिंक यू कैन मैनेज योरसेल्फ।
0: यूथ की बात करें तो आजकल कई यंगस्टर्स में भी ओबेसिटी हो जाती है, इसका क्या कारण है और निदान क्या है?
1: तो मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइम इटसेल्फ इज समथिंग कि भाई बैठे ही तो हैं, तभी तो बैठ के स्क्रीन कर रहे हैं, तो अगर आप बैठे रहेंगे तो आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ अन ईजी टारगेट फॉर ओबेसिटी टू स्ट्राइक। तो प्लीज़ हर 15 मिनट में उठ के वॉशरूम जाइए, वापस आइए अपने ही रूम में, अपने ही क्यूबिकल में घूमिए, छत पे जाइए, अपने आंगन में चलिए, अगर आप नहीं कहीं जा रहे हैं प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ योर steps.
0: जी,
1: that's very
2: important. I also feel that these youngsters, which I feel in OPD also, they usually in a habit of awakening late night. So usually they wake up in the 2 a.m., 3 a.m. and they have the intermittent munching also in the meantime. So late night awakening को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये रोकेंगे तभी अर्ली मॉर्निंग वाले सारे इश्यूज शुरू हो पाएंगे।
1: और पूजा ये बात सच है कि रात का खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पचता है, वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप रात को खाते हैं और
0: लेट नाइट
1: सो जाते हैं।
0: जी जी,
2: मेंटली आल्सो इट डिस्टर्ब्स योर होल सिनेरियोस।
0: तो डॉक्टर अमित चावरा जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों ने आज हमें डीलिंग विद ओबेसिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू एवरीवन।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। असम सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का बजट पेश किया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार की वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण की पहल का स्वागत किया। इसे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मार्सेलो अरेवालो और जेलेना अस्टोपेंको की जोड़ी ने विमिल्डन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत लिया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की ही तरह अंदरूनी सफाई भी बहुत जरूरी है। इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जमा विषाक्त और टॉक्सिन्स को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और विषमुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा प्रणाली में डिटॉक्सिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के साथ एक समय के बाद अपशिष्ट बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। हालांकि इसका कुछ अंश शरीर में शेष रह जाता है, जो धीरे धीरे जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। डिटॉक्सिफाइंग की विधि आपको बीमार से बचाने में मदद करने के साथ शरीर के तमाम अंगों को स्वस्थ और फिट बनाने में सहायक है। आप घर पर ही आसानी से कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर शरीर से विषाक्तताओं को कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जिसको सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रक्त को शुद्ध करना। ये लिवर में रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बॉडी डिटॉक्स के दौरान किडनी, फेफड़े, लिम्फैटिक सिस्टम और

त्वचा से विषाक्त पदार्थों को भी समाप्त किया जाता है। आमतौर पर शरीर की बाहरी शुद्धि पर तो हम सभी का ध्यान होता है, लेकिन आंतरिक सफाई पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अगर शरीर में हार्मोन संतुलित नहीं रहते हैं तो इससे कई रोगों का जोखिम बढ़ जा सकता है। खासकर महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अनियमित पीरियड्स, PMS, PCOD, PCOS और थायराइड आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हार्मोन्स को संतुलन और पेट को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स कई गंभीर रोगों को जन्म दे सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स हार्मोन्स को संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं? इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के जरिए आप जानेंगे ये सब टिप्स। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम सभी दिन भर खूब पानी पीते रहते हैं तो ये शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। पानी पीते रहने से किडनी के माध्यम से अपशिष्ट उत्पाद आसानी से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके शरीर में जमा होने का जोखिम कम हो जाता है। पानी पीते रहने से शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण में भी लाभ मिलता है। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो रोग पैदा करने वाले मुक्त कणों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खट्टे फल का शरीर पर एक क्षारीय प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के पीएच संतुलन को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ होता है। ऐसे पदार्थों का अधिक सेवन करें जो आपके पाचन को बेहतर बनाए और पेट को स्वस्थ रखे, साथ ही आपको पेट में गैस और कब्ज से बचाए। अनपचा भोजन शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है। आप छाछ, दही, फर्मेंटेड फूड्स जैसे प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं। सांस संबंधी व्यायाम करने से शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिलती है, साथ ही ये आपके फेफड़े को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ये एक्सरसाइज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना और अपने सिस्टम को साफ करने में मदद करने के लिए दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू के साथ करना फायदेमंद है। बॉडी डिटॉक्स के लिए उचित आहार भी आवश्यक है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। वही फाइबरयुक्त चीज़ें पाचन को ठीक रखने के साथ मलत्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है, जिसके शरीर के अपशिष्टों को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये लम्हे प्रोग्राम मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। लम्हे प्रोग्राम के हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रसारित किए गए सभी प्रोग्राम्स डॉक्टर, विशेषज्ञ व अकेडमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रोग्राम में प्रसारित किए गए तत्वों के सूचनाओं को लम्हे प्रोग्राम के पेशेवर यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा जांचा परखा गया है। संबंधित प्रोग्राम श्रोताओं की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। लम्हे प्रोग्राम में जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और ना ही जिम्मेदारी लेता है। प्रोग्राम में कही गई संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉडी डिटॉक्स के बारे में। आप तो जानते हैं कि अगर खाना पचने में ज़रा आपको दिक्कत हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, इससे जो भी ऐसा खाना बच गया है अपने पेट में वो फर्मेंट होती है और टॉक्सिन्स के रूप में कई प्रकार की बीमारी फैलाती है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
और आसान तरीका डिटॉक्स का ये भी

है दोस्तों कि हम फास्ट करें यानी उपवास रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, उपवास रखने से जितने भी विषैली पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पहले तो लगता है कि उपवास रखना बहुत ही मुश्किल है, पर धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ घंटों तक आप शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में 24 घंटे, फिर उसका समय धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। पर ज़रूर अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा करने के बाद ही आप जो भी फास्ट करना है, उपवास करना है, ये शुरू कीजिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो दोस्तों, फास्टिंग के बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट्स भी हम देख चुके हैं लोगों में। जितना जल्दी डिटॉक्स बॉडी फास्टिंग में होता है वो न किसी तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए फास्टिंग को अपनाएं। कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करके एक पूरा दिन आप फास्ट कीजिए और देखिए आपका ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल्स कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। अभी आपने सुना हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे, और अब स्वागत है आप सबका आपके अपने शो अल्फा जेन में। आखिरकार फ्राइडे आ ही गया। हफ्ते के 5 दिन की भाग दौड़, डेडलाइंस, मीटिंग्स, क्लासेस, ट्रैफिक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद फ्राइडे शाम एक अलग ही सुकून लेकर आती है। जैसे ही ऑफिस या कॉलेज का लास्ट आवर खत्म होता है, चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान नहीं आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले 2 दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ हमारा होगा। आज की जनरेशन के लिए वीकेंड्स सिर्फ छुट्टी थोड़े होते हैं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होते हैं खुद को रिचार्ज करने की। किसी के लिए ये फेवरेट कैफे की कॉफी है, तो किसी के लिए घर का आराम, और किसी के लिए बस अलार्म के बिना एक लंबी वाली नींद। पूरे हफ्ते हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, टारगेट्स कंप्लीट करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ काम करने का नाम थोड़ी है। थोड़ा रुकना, थोड़ा मुस्कुराना और अपने लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। इसी पॉजिटिव फ्राइडे फीलिंग के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफर, जहां बात होगी उन छोटी छोटी चीजों की जो हमारे वीकेंड्स को यादगार बना देती हैं।

I have an amazing playlist for you today. क्योंकि आज है फ्राइडे. फ्राइडे को हम क्या करते हैं, थोड़ा मूड अपना हल्का करते हैं. वेलकम बैक. और आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब एक चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं और वो है, एनी गेसेस? आराम. वीकेंड्स में सुबह का अलार्म अक्सर हमारी नींद से जीत ही जाता है. एक हाथ में कॉफी, दूसरे हाथ में फोन और दिमाग में दिन भर की प्लानिंग. धीरे धीरे ये रूटीन इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हम भूल ही जाते हैं कि बॉडी और माइंड को भी तो ब्रेक की जरूरत होती है. इसीलिए वीकेंड की सुबह कुछ खास होती है. अलार्म की आवाज नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से आंख खुलना, बिना किसी जल्दी के चाय या कॉफी पीना और थोड़ी देर के लिए बस कुछ भी ना करना. कभी कभी ये डूइंग नथिंग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. देखो, आजकल वेलनेस की बात तो हर कोई करता है, लेकिन वेलनेस सिर्फ जिम या हेल्दी फूड तक सीमित नहीं होता. अच्छी नींद, थोड़ा सा सुकून और खुद को रिलैक्स करने का मौका भी उतना ही जरूरी है. हर हफ्ते का ये छोटा सा पॉज हमें नए वीक के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब हम खुद को वक्त देते हैं तभी हम अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दे पाते हैं. और इसी रिलैक्स्ड मूड को और खूबसूरत बनाती है ये अगली धुन.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष

भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक। आप सुन रहे हैं अल्फा जेन विद मी ज्योतिका। अक्सर हम कहते हैं कि वक्त बहुत तेज भाग रहा है और शायद इसीलिए वीकेंड्स हमें उन लोगों के और करीब ले आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, है ना। फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है और वही जो हमारा क्लोज नेट सर्कल होता है। पूरे हफ्ते बिजी शेड्यूल्स और उसके बीच में जब हम फैमिली के साथ बैठकर डिनर करते हैं, दोस्तों के साथ चाय पे हंसी मजाक करते हैं तो कितना मजा आता है। किसी अपने से लंबी बात करना या बस घर के ड्राइंग रूम में सबके साथ एक मूवी देख लेना, ये छोटी सी बातें ही तो सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, हमारी यादें बन जाती हैं। आज की जनरेशन एक्सपीरियंसेस को बहुत वैल्यू करती है। महंगी पार्टी से ज्यादा कभी कभी एक सिंपल इवनिंग वॉक या रोड साइड चाय भी दिल को सुकून सा दे जाती है, क्योंकि असली लग्जरी हमेशा किसी जगह या चीज में थोड़ी होती है, बल्कि उन लोगों में होती है जिनके साथ हम अपना वक्त बांटते हैं। फ्राइडे हमें ये भी याद दिलाता है कि लाइफ की असली खुशियां बहुत सिंपल होती हैं। थोड़ा सा वक्त, अच्छी कंपनी और दिल से निकली हुई मुस्कान, बस इतना ही काफी होता है एक खूबसूरत वीकेंड की शुरुआत के लिए। तो हर चीज में भागने की तो जरूरत होती नहीं है हमें। अगर आप अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो हर चीज को थोड़ा स्लोली स्लोली एंजॉय करें ना।

आजकल एक फ्रेज बहुत सुनने को मिलता है जिसका किसका इस शब्द का नाम है सेल्फ केयर। और शायद पहले इस शब्द का मतलब सिर्फ स्किन केयर या स्पा तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज की जनरेशन ने सेल्फ केयर को एक नया मीनिंग दे दिया है। कभी अपनी फेवरेट कॉफी के साथ बालकनी में कुछ पल गुजारना, कभी एक अच्छी सी किताब पढ़ना, कभी अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट लगाकर घर के छोटे छोटे काम करना, और कभी बिना किसी गिल्ट के बस कुछ देर के लिए खुद के साथ वक्त बिताना, ये सब भी सेल्फ केयर का ही हिस्सा है जनाब। हफ्ते भर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते रहते हैं। इस बीच कभी कभी अपनी खुशी, अपनी हेल्थ और अपनी पीस ऑफ माइंड पीछे छूट जाती है। वीकेंड हमें एक मौका देता है कि हम थोड़ा सा रुक कर अपनी तरफ भी तो देखें। खुद का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। जब हम अंदर से खुश और शांत होते हैं तभी हम अपने हर रिश्ते और हर जिम्मेदारी को और भी बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। तो इस फ्राइडे थोड़ा वक्त खुद को भी दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी कंपनी अपनी ही तो होती है।

फ्राइडे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है सोचिए जरा। देखिए फ्राइडे इवनिंग का नाम आते ही कई लोगों के दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स बन जाती हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी आता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि हर ट्रिप के लिए लंबी प्लानिंग हो या बहुत बड़ा कोई बजट प्लान करना हो। कभी कभी शहर से सिर्फ एक दो घंटे की दूरी पर भी ऐसी जगह मिल जाती है जहां पहुंचते ही लगता है जैसे पूरे हफ्ते की थकान हवा हो गई हो। एक पीसफुल रिजॉर्ट, किसी हिल स्टेशन की ठंडी हवा, किसी लेक के किनारे बैठकर सनसेट देखना, या फिर किसी हेरिटेज टाउन की गलियों में आराम से घूमना। ये छोटी छोटी जर्नीज ही तो जिंदगी को और खूबसूरत बना देती हैं। और अगर कहीं दूर जाना पॉसिबल ना हो तो अपने ही शहर का कोई नया कैफे, एक बहुत ग्रीन सा कोई पार्क या अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर भी वीकेंड को स्पेशल बना ही देता है। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है रूटीन से बाहर निकलना, अपनी मोनोटनी तोड़ना, क्योंकि हमारी जो मोनोटनस लाइफ होती है ना, हम उसके लूप में फंस जाते हैं। देखिए सफर चाहे छोटा हो या बड़ा, हर नई जगह कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाती है, और शायद इसीलिए हर वीकेंड एक नई कहानी लिखने का आपको मौका देता है। तो आज आप इस वीकेंड कौन सी नई कहानी लिखेंगे, सोचिए। वीकेंड फुर्सत से एंजॉय करना, दिल खोल कर एंजॉय करना।

देखो, हम सब ना एक डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। दिन की शुरुआत फोन से होती है और अक्सर रात भी फोन पर ही खत्म होती है। ईमेल्स, नोटिफिकेशन, रील्स और मैसेजेस के बीच कभी कभी हम रियल मोमेंट्स को महसूस करना ही भूल जाते हैं। वीकेंड शायद इसीलिए एक अच्छा मौका होता है थोड़ा सा डिजिटल ब्रेक लेने का, फोन को कुछ देर के लिए साइड पर रख कर फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना, दोस्तों के साथ दिल खोलकर बातें करना, या बस शाम की ठंडी हवा में बिना किसी स्क्रीन के वॉक पर निकल जाना। ये छोटी सी आदतें दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान तो बनाती है, लेकिन असली यादें हमेशा स्क्रीन के बाहर ही बनती हैं। किसी अपने की हंसी, एक कप चाय के साथ लंबी बातचीत या बारिश की खुशबू, इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है जनाब, लेकिन इनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। तो इस वीकेंड थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन दुनिया से ब्रेक लीजिए और अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस कीजिए। अपने आसपास की जो आपकी ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको इन्जॉय करिए और अपनी ये जो डिजिटल दुनिया की भूल भुलैया है ना, उससे निकल जाइए।

आप सुन रहे हैं अल्फा जैन. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. हर वीकेंड का अपना एक अलग अंदाज होता है. कुछ लोग अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग उस लिस्ट को देखकर ही उसे मंडे के लिए छोड़ देते हैं. और सच कहें दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है. वीकेंड का मतलब सिर्फ बिजी रहना या पूरा दिन सोते रहना भी नहीं है. शायद इसका सबसे खूबसूरत मतलब है राइट बैलेंस. थोड़ा सा घर का काम, थोड़ा सा अपना फेवरेट म्यूजिक, थोड़ा सा फैमिली के साथ वक्त और थोड़ा सा खुद के लिए. कभी किचन में कोई नई रेसिपी ट्राई करना, वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना, अपनी फेवरेट फिल्म देखना या बस शाम को यूं ही अपनी छत पर या वरांडे में टहलने निकल जाना. ये छोटी छोटी चीजें ही वीकेंड को मीनिंगफुल बना देती हैं. आज की फास्ट मूविंग लाइफ में हम अक्सर हर चीज को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पल का प्रोडक्टिव होना जरूरी थोड़ी होता है. कुछ पल सिर्फ जीने के लिए होते हैं, बिना किसी डेडलाइन के, बिना किसी प्रेशर के. इस वीकेंड खुद को परमिशन दीजिए थोड़ा धीरे चलने की, क्योंकि जब हम बैलेंस के साथ जीते हैं तभी हर नया हफ्ता एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता है. लीविंग यू With this beautiful track, इसी positive energy के साथ. अब है

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बहुत ही छोटा सा एड ब्रेक लिया था मैंने यहाँ पर। दोस्तों, फ्राइडे सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, लाइक आई एम रिपीटेडली सेइंग, ये एक एहसास है, एक छोटी सी लाइन जो हमें याद दिलाती है कि हमें एक और हफ्ता पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। हर हफ्ते हम कुछ अचीवमेंट्स को लाइनअप करते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। शायद हर चीज हमारे हिसाब से ना हुई हो, लेकिन हर एक्सपीरियंस ने हमें थोड़ा और मजबूत जरूर बनाया है। इसीलिए वीकेंड शुरू होने से पहले एक पल के लिए रुकना भी जरूरी है। उन लोगों के लिए शुक्रिया कहना जो हमारे साथ खड़े रहे, उन मौकों के लिए जो हमें मिले, और सबसे बढ़कर खुद का भी शुक्रिया करना, क्योंकि हर मुश्किल के बाद भी हमने एक और हफ्ता मुस्कुराकर पूरा किया। कभी कभी खुशी किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि इसी बात से मिल जाती है कि हम आज भी नए सपने देख सकते हैं और नए हौसलों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लीविंग यू विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जेटिक ट्रैक, भूलिएगा मत, आज का नाम फ्राइडे है।

से इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी मुलाकात आपके वीकेंड की शुरुआत को और भी सुकून भरी और खुशनुमा बना पाई होगी। कभी आराम कीजिए, कभी अपनों के साथ वक्त बिताइए, कभी किसी नई जगह का सफर कीजिए और कभी बस खुद के साथ कुछ पल वक्त गुजारिए, क्योंकि असली रिचार्ज वही होता है जो दिल को हल्का कर दे और चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट ला दे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, मैं ज्योतिका लेती हूँ आपसे इजाजत। आकाशवाणी FM रेनबो सुनते रहिए, अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हर नए दिन का स्वागत इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड।

न्यूजीलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। कहा, इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा मिली। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरगन ने आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा की। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। असम सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने अधिक अल्कोहल वाली औषधियों के नियम सख्त किए। अब लाइसेंस के बिना बिक्री नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच जारी। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

5 बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूज

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सैटेलाइट्स। अब बातों का सिलसिला शहर का, सांझ का शो है सैटेलाइट्स और इस शो में आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि।

5:06 आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स यानी शहर से जुड़ा हुआ शो, और शहर जो सिर्फ इमारतों से तो नहीं बनती, आपसे, हमसे, लोगों से, रिश्तों से। बहुत साधारण सी बात लगती है लेकिन सबसे बढ़कर जिम्मेदारी से बनती है। अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत है सड़क सुरक्षा और शहर में सुरक्षित चलना। ये सारी बातें सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम शो शुरू करते हैं तो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ही रिमाइंड करते हैं आपको। सांझ के शो सिटी लाइट्स में बारिश जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही जिम्मेदारी साथ में लाती है। इस समय गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ सीमित रहिए, ध्यान से चलाइए, बी माइंडफुल।

आप सुन रहे सैटेलाइट्स और ये वो पहर है जो थाम लेती है हमें, हल्के से थाम लेती है। आसान नहीं था आज का दिन, हल नहीं निकला, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। मेरा नाम शैली भाषांजलि, सांझ के शो में आपके साथ हूँ।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। आज के शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। और बारिश की बूंद के बाद जो पहली खुशबू होती है उससे तो परिचित हैं हम सब, लेकिन एक अंग्रेजी का एक वर्ड है जिससे मैं तो परिचित नहीं थी। बारिश की जो पहली खुशबू को जो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पेट्रिकोर, ये खुशबू तब बनती है जब बारिश की बूंदें ना सूखी मिट्टी में जो जो जो नेचुरल ऑयल होता है, जीवाणु होते हैं, उनसे जब जा करके मिलती है और जब खुशबू निकलती है उसे कहते हैं पेट्रिकोर। जिनको भाषा में रुचि है, सीखने की, जानने की उत्सुकता है, उनके लिए ये वर्ड पेट्रिकोर। बाकी के लिए बारिश की बूंद जब धरती पर पड़ती है, सौंधी खुशबू आती है, महक फैलती है, तो दिल यूं ही महक उठता है। सांझ का शो है सिटी लाइट्स, चैनल है आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो और शहर की जब बात करते हैं तो शहरवासियों की बात की जो का जो विषय होता है उसमें कई बार लेटली था, जब बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश बारिश, और जब बारिश हुई एक दो दिन तो जल भराव, क्यों बारिश, क्यों छाता चाहिए, भीगते क्यों है, बच जाए भीगने से। वेल, बारिश में पेड़ तो शिकायत नहीं करते, नदियाँ और गहरी हो जाती हैं, शायद यही सिखाते हैं जीवन थोड़ा बेहतर, थोड़ा और मजबूत। एंजॉय द रेन्स।

और दिल्ली की सारी महिलाएं अगर आप डीटीसी बसेस में सफर करती हैं तो क्लस्टर बसेस में भी मुफ्त यात्रा अगर चाहिए तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब जो मुफ्त बस यात्रा की जो सुविधा है उसके लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड इज मैंडेटरी, अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। 31 जुलाई के बाद ना डीटीसी और क्लस्टर बसेस में मुफ्त यात्रा के लिए जो कागज़ वाला पिंक टिकट है ना वो नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको वो सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा, तो वो ले लीजिएगा। और आंकड़े ये कहते हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं ये कार्ड बनवा चुकी हैं, बट मेनी मोर टू टेक दिस। अब पुराने पिंक टिकट का इस्तेमाल मत करिएगा और 31 जुलाई इज अप्रोचिंग, ये ज़रूर ये जो सुविधा है अपने लिए ले लीजिएगा और सफ़र आसान रहेगा बिना किसी परेशानी के। और 5:34 हो चुके हैं तो सफ़र आसान तभी होगा जब आपके धैर्य की परीक्षा होगी और आप पास कर जाइएगा। लगातार हॉर्न बजाने से जैम कम नहीं होता, तनाव ज़रूर बढ़ जाता है, जानते हैं आप, रिमाइंड कर रही हूँ, बस थोड़ा धैर्य रखिए, लेन अनुशासन का पालन कीजिए, दूसरों को भी थोड़ा सा ना सुरक्षित चलने का अवसर दीजिए। सभ्य चालक वही है जो दूसरों का भी सम्मान करे। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सांझ के शो में जुड़े रहिए हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में सिटी की बातें होती हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी की भी बातें। एक पेड़, एक बड़ा पेड़, हर साल सैकड़ों किलो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाहित करता है। इसे जब भी मौका मिले एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। इस मौसम में बारिश जितनी रोमांटिक फिल्मों में लगती है ना, असल ज़िंदगी में उतनी जिम्मेदारी भी मांगती है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: You're tuned into FM Rainbow, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में जब सिटी का प्रकाश पड़ता है विकास की ओर तो बहुत आनंद आता है। मेट्रो नेटवर्क की बात कर रही हूँ, एक अच्छी खबर आने वाले भविष्य के लिए। मेट्रो नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। रिसेंटली सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर इंद्रलोक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, और लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा यह पूरा कॉरिडोर जो है ना अंडरग्राउंड होगा, और लगभग 10 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस विकसित किए जाएंगे इसमें। और इसके बनने के बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर्स हो जाएगी, और उसके साथ ही ये महसूस हुआ कि दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन बन जाएगी और सबसे अधिक इंटरचेंज स्टेशन और अंडरग्राउंड स्टेशंस भी इसमें होंगे। यानी आने वाले समय में जो दिल्लीवासी हैं और जो दिल्ली आते हैं उनका सफ़र और भी आसान और भी तेज़ और भी सुविधाजनक, यही तो है विकसित दिल्ली की आधारशिला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आशा करती हूँ कि आपने सुनिश्चित कर लिया कि मतदाता सूची में आपका नाम सही है, सटीक जानकारी है। इंडीड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी। आप पर हम, लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा।

आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं सैटेलाइट सांझ का शो। और कहते हैं कि बादल सिर्फ आकाश में नहीं मन में भी घिरते हैं। कुछ सवालों की बिजली कौन देती है, और बारिश आती है तो शहर भीगता है, और कई बार वो हिस्सा भी जो परसों से सूखा था हमारे भीतर। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, फिर मुलाकात होगी सांझ के शो सैटेलाइट्स में।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया, कहा इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा मिलेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार विधानसभा सदस्य

के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली ओरिएंटेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज ओमान में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उन्होंने भारत ओमान साझेदारी में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच जारी फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 6:02 हुए हैं, हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी और ये स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 एफएम दिल से दिल तक आपका स्वागत है जी। मौसम ऐसा हो रहा है कि बस पूछिए मत, कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप अपना छाता लेके चलते हैं ना, क्योंकि अम्ब्रेला लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और आप भीग सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मत चाहिए। वैसे बारिशें अगले 2-4 दिनों में बहुत तेज़ होने वाली हैं, सो मौसम ऐसा हो रहा है कि अच्छा भी लग रहा है, बारिशें तो बहुत अच्छी लगती है, रोमांटिक एज आई से रोमांचक हो जाते हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं अगर हम ख्याल ना रखें तो। खैर, मौसम की बात चल रही है तो आज मेरा सवाल जो है मौसम से ही जुड़ा है और आपकी पर्सनैलिटी ऑफकोर्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व ये मौसम का फोरकास्ट होता तो आज का आपका फोरकास्ट क्या है, आज का आपका मौसमी अनुमान क्या है आपके बारे में? सिर्फ आज का पूछ रही हूँ। अगर आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी वेदर फोरकास्ट होती तो आज का आपका फोरकास्ट क्या है, बताइए हमें 9868107070 पर। नंबर है 9868107070। सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं, फिर आप कहेंगे कि हमने सवाल ठीक से सुना नहीं, इसलिए भर भर के मुझे मैसेजेस चाहिए और 9816810707070। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी कोई वेदर फोरकास्ट है और आज आपका फोरकास्ट क्या होगा, ये आपको बताना है हमें, जल्दी से बताइए और हम आपके लिए बजा रहे हैं मस्त सा गाना।

एब्सोल्युटली, दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा है. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं, गुड इवनिंग मैम, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स में मैं, मेरी पर्सनालिटी का कोई वेदर फोरकास्ट होता तो आज मेरे मन का मौसम बहुत सुहारा है और खुशी की बारिश होने की पूरी संभावना है, इसके कारण मन बहुत उत्साहित है. वाह, क्या बात है, चलिए अच्छी बात है. एंड शुभ संध्या प्रिया जी, सुनीता जी, एंड आज मैंने बारिश को एंजॉय किया और ड्यूटी से आते समय भीगते हुए आया हूँ, दिल खुश हो गया. तो मतलब आज का आपका फोरकास्ट बारिश है. हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से. ओके, एंड प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही उम्दा गीत से किया, कस्बा कुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फरहाज, फरहीन, फरहान, फरिया, ताहिरा. एक ही मैसेज में आप मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए, क्योंकि आप बार बार मैसेज करेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा. सो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है. शैली भाषांजलि को नमस्कार, मैं सुनीता शाहवादी हूँ और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि यदि मौसम होता तो मैं बहुत जम के बरसता. राम यादव रेवाड़ी हरियाणा से. शैली भाषांजलि मुझसे पहले प्रोग्राम कर रही थी और मैं सुनीता शाहवादी हूँ. ऑलराइट, एंड नमस्ते, आज का मेरा फोरकास्ट है प्लेजेंट विद अ क्लाउडी वेदर, ब्लू स्काई एंड कूलिंग सूदिंग ब्रीज. काश ऐसा मौसम मेरे मूड रोज होता. निहारिका फ्रॉम दिल्ली. भगवान करिए आपका मौसम हमेशा सुहाना हो, यू नो, जैसे स्प्रिंग होता है. सो ये आपके अपने हाथ में भी है कुछ इस

तरह से, यस इफ़ यू वांट। मैं नमस्कार, अगर मैं मौसम होता तो मैं, मेरा मिजाज बहुत रंगीला और भावनाओं से भरा हुआ होता जो पल पल में बदलता रहता, पर स्वभाव कभी खिलखिलाती धूप का ऊर्जावान, कभी सावन की फुहार सा रोमांटिक, कभी सर्दियों की धूप सा सुकून भरा, तो कभी तूफानी और अप्रत्याशित होता। ललित राणा, डेरा बस्सी, पंजाब से। बहुत अच्छा कहा है, लेकिन आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बता दी, आपने पूरी ज़िंदगी का स्वभाव बता दिया। हम आज का फोरकास्ट पूछ रहे हैं, आज यानी टुडे फ्राइडे एंड 10th of July, तो आज आपका वेदर फोरकास्ट आपकी पर्सनालिटी का क्या होता है? लेकिन आपका जो आपने अपना पूरा फोरकास्ट बताया है वो बहुत खूबसूरत है, गॉड ब्लेस यू। एंड दिस वन इज डियर आरजी सुनीता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी पर्सनालिटी मौसम प्रसारण होती तो आज का मौसम कुछ यूं होता, दिल के आसमान पर उम्मीदों के बादल छाए हैं, मुस्कानों की हल्की हल्की बारिश हो रही है, नफरत की गर्मी कम है और अपनापन ठंडी हवाओं की तरह बह रहा है। सलाह है कि आज शिकायतों की छतरी घर पर ही छोड़ दें और खुशियों की बारिश में भीगते रहें। वाह क्या बात है, मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना बाजार से, थैंक यू सो मच, दैट्स अ लवली मैसेज। एंड सत श्री अकाल जी, आरजी सुनीता सत श्री अकाल, असी चंगे हैं जी, अभी सोच के जवाब देता हूँ। प्रदीप सरोजा जी, अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है? ओके, somebody is saying this is a complicated question, is it? No, अगर आपकी पर्सनैलिटी वेदर फोरकास्ट होती है तो आज आपका फोरकास्ट क्या होता है? इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एट ऑल। रिस्पेक्टेड सुनीता जी, कैसे हैं आप? अगर मेरी पर्सनल ओके, ये तो मैंने पढ़ लिया, एंड देयर इज समवन एल्स, ओके लेट मी जस्ट सी, बहुत सारे मौसम। हेलो मैम, मेरा सवाल है कि मेरी वाइफ, ओके दिस वन इज अर्लियर क्वेश्चन, ओके आई रेड इट। और गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? मैं रजनी शर्मा फ्रॉम भागपत। वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है, हो रहा था, आज फिर से इतनी गर्मी हो गई है। अगर हमारे हाथ में होता तो इतनी गर्मी नहीं करते। नहीं, मैं आपकी पर्सनैलिटी का वेदर फोरकास्ट चाहती हूँ, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपका जो, आपकी जो शख्सियत है, उसका वेदर फोरकास्ट अगर हमें आज सुनना हो तो क्या है आज आपका वेदर फोरकास्ट? याद है पिछली बार मैंने पूछा था फ्रिज को अगर कंप्लेंट करनी हो तो आज आपको अपना वेदर फोरकास्ट बताना है। कैन वी लिसन टू रिकॉर्डिंग ऑफ द शो डॉक्टर रेडियो के? वो हम बात करते हैं। नरेंद्र जो सोनी देवगढ़ पटियाला से कहते हैं, गुड इवनिंग सुनीता शाहबादी जी, 20 किलोमीटर की चलेगी हवाएं, 20 किलोमीटर की चलेंगी, बादल छाए रहेंगे। ओ ये आपका फोरकास्ट है, तो आप भी बताइए कि अगर आपकी पर्सनालिटी वेदर फोरकास्ट होता तो आज आपका फोरकास्ट क्या होता, अपने बारे में बताइए, आज का, सिर्फ आज का बताइए हमें। 9868107070 पर ये है अगला गाना आपके लिए, जल्दी से मैसेज भेजिए, बहुत सारी

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: राइट जी, टाइम हुआ है 6:20 और हमारे पास मैसेजेस आपकी आ रही हैं एंड आई एम लाइकिंग इट। और मैं चाहती हूँ कि ढेर सारी मैसेजेस आप भेजें और मैं सारी की सारी मैसेजेस पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। हाय, गुड इवनिंग डियर सुनीता, कैसी हैं आप? एंड आज के टॉपिक पर मैं यही कहना चाहूँगी, आप हमेशा सेम ही लिखती हैं तो उसी से पता चल जाता है कि आप कौन हैं। कि मैम, जब आप आज के लिए मेरी पर्सनैलिटी वेदर फोरकास्ट होता तो बस मुझे तो सुहाना मौसम होना चाहिए, बस बारिश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैम हमारे यहाँ तो परसों से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है नॉनस्टॉप, तो अब दिल नहीं जा रहा कि और बारिश हो, लेकिन गर्मी नहीं होनी चाहिए। अमांशी शर्मा, हस्तिनापुर। अच्छा, सुहानी हवा बारिश के बिना। ओके, दिस इज सुनीता।

यदि मैं मानसून होता तो भविष्यवाणी आज की करता कि तेज बारिश में हवाएं चलने की आशंका लग रही है। आकाश में बादल छाए रहेंगे और बरसेंगे, जिससे सड़कों पर पानी भर सकता है और इसलिए गाड़ी नहीं मेट्रो से सफ़र करना। हाँ, साथ में छाता रखना नहीं भूलना दिल्ली वासियों, जब घर से निकलो, क्योंकि सावन का महीना चल रहा। अनिल शर्मा, सरिता व्याज। ये तो आपने दिल्ली का मौसम बताया या आपके आसपास का मौसम, आपका अपना मौसम क्या है? व्हाट इज़ योर वेदर फोरकास्ट? आपका अगर आप मौसम होते, वेदर फोरकास्ट होते, तो आपका मौसम का जो अनुमान होता आज क्या होता? हाय प्रोफेसर। हाय राहुल, हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड टू यू टू। इट वुड बी क्लाउडी, ओवरवेल्म्ड, लॉट्स गोइंग ऑन इन माय हेड, मूड एंड नीड टू वेंट और गो फॉर अ वॉक। दैट्स द बेस्ट आइडिया, सीरियसली। वॉकिंग इज द बेस्ट आइडिया, आई एम टेलिंग यू। आई लव वॉकिंग, मतलब चलती रहूँ, लेकिन मौसम अच्छा होना चाहिए साथ साथ। सो इट विल बी क्लाउडी, ओवरवेल्म्ड, एंड हो सकता है ठंडी हवाएं, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। गॉड ब्लेस यू। ओके, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी एंड सिमरन मुखी कहते हैं शांति नगर सोनीपत से कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर हमारी बॉडी वेदर फोरकास्ट होती तो आज का मौसम बहुत सुहाना होता। ओके, सबका सुहाना ही होता है। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू। वेरी फनी, आज का वेदर फोरकास्ट, आज दिलों पर प्यार की हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बॉस के गुस्से की गरज के साथ काम की तेज़ बौछार पड़ रही है। सिंगल लोगों के लिए उदासी के बादल छाए रहेंगे, जबकि कपल्स के यहाँ रोमांस की फुहार जारी हो रहेगी। और हाँ, जिनके पास छाता नहीं, वह मुस्कुराहट ओढ़ कर निकलेंगे और आज हंसी की बारिश पूरे दिन होती रहेगी। वाह, ये तो आपने पूरे सबका ही बता दिया। मोहम्मद सरफराज आलम जी, मैं आपका बता रही हूँ, आपका पूछ रही हूँ, बट ये खूबसूरत लिखा है आपने। हेलो डियर सुनीता, गुड इवनिंग डियर। इतने सुहाने मौसम की बात ही की है, एक रोम खुश है। आई विश हर कोई खुश रहे जैसे भी हो। इस रंगों की खुशबू से आपसे मिलन हो जाता तो मौसम को चार चांद लग जाते। मिसेस धर्म भाटिया, रोहतक। सीरियसली, आ जाओ मैं फिर, क्या कहते हो? गुड्डू धाकड़, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बिड़ावन गांव से कहते हैं कि आज वेदर फोरकास्ट में चार दिन नहीं बरसता ताकि किसान आराम से अपना काम कर लेते। ये अच्छा था। ओके, दिस वन वाज गुड, हाउ स्वीट ऑफ यू। डॉक्टर ए के टंगन टंडन कहते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर ए के टंडन माया एनक्लेव से कहते हैं, वेल डियर आर जी, आई एम एन 82 ईयर ओल्ड प्रोफेसर। मेरा आज का फोरकास्ट कुछ ऐसा है, घर घर में ज्ञान का दीप जलेगा, बच्चे पर्यावरण के बारे में नई नई बातें सीखेंगे, जब सब जगह शांति और प्रेम का वातावरण होगा। हाउ स्वीट। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू आर 82 एंड स्टिल गोइंग। गॉड ब्लेस यू, हैव वेरी लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। एंड आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? आई डोंट नो, यू आर अ प्रोफेसर। ओके, यू आर अ प्रोफेसर। व्हाट डू यू टीच? आई डोंट नो, बट आप ज्ञान का दीपक तो जला ही रहे हैं, और भगवान करे हमेशा हर जगह ज्ञान का दीपक जलता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर टंडन। एंड नमस्कार, कैला शर्मा कहते हैं गुरुग्राम से, यदि आज कि मुझे भविष्यवाणी करनी होती तो मैं यही कहता, वर्षा रानी जरा जम के बरसो, मेरा महबूब जा न पाए, और हम दोनों मिलकर खूब बातें करते, ढेर सारी बातें और मौसम का मजा लेते। वाह, क्या बात है। कैलाश शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, अगर अपनी बात करूं तो मैं बस यही चाहता हूं कि रेन इतनी हो जिससे सड़क पर चलने वालों को कम से कम परेशानी हो, वो आराम से घर आ जाए। हैप्पी रेन वाला मौसम जी, प्रदीप सरूजा। यानी रेनी मौसम और सुहाना मौसम सबको ज़्यादा भाता है। चलिए, आप भी हमें बताइए कि आप अगर मौसम होते आज तो आपका वेदर फोरकास्ट, आपका अपना क्या होता? आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह के होते? बारिश होते, धूप होते, तेज हवाएं होते, बर्फ होते, या फिर आंधी होते, तूफान होते, क्या होते? आप बताइए हमें, और जल्दी से भेजिए मैसेज 9868107070 पर। मैं फिर से गाना बजा रही हूँ मस्त वाले, एंड यू हैव टू सेंड इन मैसेजेस जल्दी जल्दी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बहुत जल्द होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर। आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: राइट जी, हमारे पास डॉक्टर AK टंडन कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। 82 years, वाह, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली थैंकफुल टू यू, आपने हमें मैसेज किया एंड इंस्पिरेशन भी हैं आप हमारे लिए, बिकॉज 82 years में हम चलते रहें और आपकी तरह ही ज्ञान बांटते रहें, ये हमारी भी थोड़ी सी इच्छा है। ओके, मैं अपना मौसम का फोरकास्ट ऐसे करना कि बारिश में भीगने का मजा लूंगा और सड़क बारिश में ही नहाकर बचपन की यादें रिवाइज करूंगा। अनिल शर्मा जी, सरिता विहार से। ओके, आपका फोरकास्ट बारिश होगा। मेरा मौसम का पूर्वानुमान यही है कि अभी बिजली गुल हो गई है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बड़ी भयंकर उमस है, किसी भी पल वर्षा हो सकती है। रंजीत कुमार मंडल, सिक्टी अररिया, बिहार से। यू नो, जैसे मैंने आपका फोरकास्ट पूछा है, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप वेदर फोरकास्ट होते तो आपका फोरकास्ट क्या था? जैसे मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरा वेदर फोरकास्ट होता है बारिश। आई लव बारिश। डियर सुनीता जी, मुझे और क्या चाहिए, आप आओ, मोस्ट वेलकम। मैंने तो पलकें बिछा रखी, हाउ स्वीट। वी विल एंजॉय इस सुहाने मौसम में, आपके पसंद का खाना बना दूं और मिलकर मजा लेंगे। चाय तो आप अच्छी बनाती ही होंगे, आई एम श्योर मिसेस धर्मभाटिया, एंड तला हुआ तो मैं खाती नहीं हूँ। और ओके, एनीथिंग यू मेक, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग। अभी अभी ट्यून किया है, गीत चल रहा था, पहली बार बोलिए, हम टॉपिक नहीं सुन पाए, हम भी शामिल हो गए हैं, हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए। कृष्ण वंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। हमारा प्रश्न आज है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी वेदर फोरकास्ट होती तो आपका आज का फोरकास्ट क्या होता, ये है मेरा प्रश्न। तो दीजिए जवाब जल्दी से। आज सुनीता जी, इतना अच्छा शो चल रहा है कि टिप टिप बरसा पानी रिमिक्स वाला, मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने चलाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कार्यक्रम श्रोता मंच के प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार। यदि मुझे मौसम की भविष्यवाणी करनी पड़े, नहीं, आपको अपने भविष्यवाणी करनी है, तो मैं कुछ यूं कहूं बड़े प्यार से। आज गगन में बादल आएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं गुनगुनाएंगी, रिमझिम फुहारें गीत सुनाएंगी, धरती फिर से मुस्कुराएगी, फूलों पर मोती सी बूंदें सजेंगी, हरियाली नई उमंग रचेगी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंजेगा, प्रकृति का हर रंग खिल उठेगा, सूरज भी बादलों संग लुका छुपी खेलेगा, इंद्रधनुष आसमान में रंग बिखरेगा, ऐसा होगा आज का मौसम सुहाना, हर पल बनेगा खुशियों का तराना। गांव डाकघर ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना। यानी सबका मौसम ऐसे ही रिमझिम बरसता सावन। ओके, आकाश

मी एफ एम रेनबो न्यू दिल्ली, दिल से दिल तक. मैसेज मसाला मिक्स, एंकर सुनीता शामादी. गुड इवनिंग. योर टॉपिक इज वेरी गुड. टॉपिक इज योर पर्सनैलिटी. यदि मेरी अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी होती तो मैं बादल बनकर आसमान में छाया रहता. वाह, ये हुआ सही जवाब. और अपने देश की जनता को ठंडी ठंडी हवाओं से राहत सुकून प्रदान करता. दिस इज माई थिंकिंग. नियमित श्रोता हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से. वाह क्या बात है, सही जवाब. अगर मैं मौसम होता तो बरसात बनके ऐसा बरसता जिससे धरती की भूख मिट जाए, कुएं तालाब नदियां लबालब भर जाएं और किसानों के चेहरे खिल उठे. भैरूलाल वक्तार्य धाकड़, उन्हें उज्जैन मध्य प्रदेश से. गुड, थैंक यू. अब सही जवाब आने लगे हैं. आपके रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एफएम रेनबो की वरिष्ठ श्रोता मिसेस धर्म भाटिया जी के रूप में एक माँ का स्नेह मिला. हाँ, स्वीट. लोग अक्सर दोस्त बनाते हैं लेकिन मुझे तो एक माँ मिल गई है. ये रिश्ता मेरे लिए अनमोल है. माँ तो अनमोल होती ही है. मेरी शेर व शायरी और कविताओं की उन्होंने हमेशा स्नेह और सराहना दी है. उनका आशीर्वाद और अपनापन मुझे निरंतर बेहतर लिखने की प्रेरणा देता है. रेडियो सचमुच केवल आवाज़ों का माध्यम नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सेतु है. इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद. मोहम्मद सरफराज जी, थैंक यू. आप लिखते भी बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है. और गॉड ब्लेस यू. अच्छा अच्छा लिखते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए तो आप हमेशा नोटिस होते रहेंगे. जी, हमारा वेदर फोरकास्ट होता थोड़ा सा चिपचिपा उमस से भरा हुआ. काम से निकल गए हैं घर को, अब बस अब रिमझिम गिरे सावन वाला मूड है. हम यशवंत, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से. ओके. मैं अगर मौसम होता तो जैसे हमारे किशन भाई जानते हैं वैसे ही करते हैं कि बारिश में पानी, गर्मी में थोड़ी सी धूप, कम सर्दी में थोड़ी सी सर्दी, जैसा लोग बोलते हैं वहाँ वैसे करते हैं. और बारिश में क्योंकि किशन पानी के बिना अधूरे हैं बल्कि हम सब लोग अधूरे हैं. मोहम्मद जावेद आलम जी, आप क्या लिखना चाहते हैं मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये सब खिचड़ी पका हुआ है. क्योंकि जब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ तो ये प्रॉपर जाना चाहिए, तो इसलिए आप थोड़ा सा बीच में पॉज दे दीजिए, कोई थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए. और क्या लिखना चाहते हैं आप हमें बताइए. आपको वैसे बारिश का मौसम पसंद है ये मुझे समझ में आ गया. ओके. हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार. हाय दिल्ली. ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड. एंड ऑन टुडेज टॉपिक आई'd लाइक टू से दैट वेदर फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू मी वुड बी अ कूल ब्रीज विच वुड ब्रिंग स्माइल टू एवरीवन एंड रेन ड्रॉप्स विच वुड ब्रिंग जॉय फॉर एवरीवेयर एंड देर विल बी नो प्लेस फॉर सैडनेस और there'll be joy and happiness and happiness will be everywhere. Okay, God bless you. आपका forecast ये होता happiness, बारिश वाला है ना, cool breeze. मैडम जी गंज डुनवारा से शमसुल कमर रही. हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत खुशगवार है. आसमान पर झुकी झुकी काली घटाएं हैं जैसे अभी बरस पड़ेंगी. फिजा में परिंदे इधर उधर दौड़ रहे हैं. हवा ठंडी और पुरकैफ है जिसमें अनगिनत फूलों की खुशबू शामिल है. लेकिन फिर भी दिल का मौसम उदास है. साथ में बैठे कुछ दोस्त खास हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और आपका खूबसूरत प्रोग्राम सुन रहे हैं. फिर भी दिल उदास है, दोस्तों के साथ बैठे हैं आप, ऐसा मौसम है और आपके दिल का मौसम बादलों वाला है. यही कहूँगी मैं, फिर तो बादल छाए हैं काले काले, इनको हटा दीजिए और सूरज देवता को निकलने दीजिए और थोड़ी सी बरसात भी आने दीजिए. थोड़ा सा अपने दिल के मौसम को खुशगवार बनाइए. अच्छी बात है, आपके दोस्त आपके साथ हैं, चाय की चुस्कियाँ भी आप ले रहे हैं, ऊपर से हमें स्टूडियो में सुना रहे हैं, हम तो यहाँ चाय नहीं पी सकते ना, ये अच्छी बात नहीं है. नमस्ते मैम, मैं अगर मानसून होता तो मैं मानसून होता ओके मैं बारिश की जगह धन वर्षा करती. वाह, ताकि सब लोग अपनी विश पूरी कर सकते और खुश रहते थे. राखी फ्रॉम किशनगंज डिस्ट्रिक्ट अजमेर. गॉड ब्लेस यू माय डियर. एंड ये गाना आपके लिए बजा रही हूँ. आप भी भेजिए मैसेज ऑन 9868107070. मेरा आज का प्रश्न है, अगर आपकी पर्सनालिटी वेदर फोरकास्ट होती तो आज का आपका फोरकास्ट क्या होता? बारिश, धूप, स्नो, हवाएँ तेज़ या ठंडी ठंडी हवाएँ या आंधी तूफान, बताइए.

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30

0: 12 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: 6:46 हुए हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी और आज आपसे मिलूंगी मैं 8 से 9 बजे भी। यस ऑफ कोर्स, म्यूजिक मस्ती में। इट्स फ्राइडे ऑफ कोर्स एंड वीकेंड शुरू हो गया है और मौसम भी ऐसा कुछ है तो डांस करना तो बनता है हमारा। थोड़ा सा पार्टी, थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए। आज तो मेरी मैडम जी भी मेरे साथ प्रोग्राम सुन रही हैं, वो स्कूल में टीचर भी हैं हिंदी और संस्कृत की। वाओ, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा जी, अजी बल्ले बल्ले, नमस्कार, कैसी हैं आप? अभी तक तो हमने प्रदीप जी से ही मैसेजेस देखी हैं उनकी ही, आज पहली बार आपका नाम सुना है। जनकपुरी से आप ये कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ एंड मे यू ऑलवेज लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं बारिश होता क्योंकि मेरे कृष्ण भाई को पानी चाहिए तो बारिश ही ला सकती है। जावेद आलम मोहम्मद, जायान आलम जयपुर से। ओके, अब आपने स्पेस देख के थोड़ा सा मैसेज लिखा। ओके, मेरे में बादल छाए रहते, ठंडी हवा चलती रहती, मन पूर्णमासी के चंद्रमा के जैसे होता। प्रवीण चौहान, खरगोन, मध्य प्रदेश से। हाउ स्वीट। ओके, हाय डियर, अगर मैं मौसम होता तो धीमे धीमे सुहाना सा और बड़ी सुकून वाली ठंडी ठंडी हवा बन जाता, लोगों को खूब सुकून मिलता और लोग इसी बहाने थोड़े खुश हो जाते, क्योंकि खुशियां आजकल कम ही हो गई हैं जीवन में और तनाव ज्यादा हो गए हैं। मेरा आपको नमस्कार है जी, आशीष खेमू का, छत्तीसगढ़ जांजगीर से। ओके, गॉड ब्लेस यू। एंड टूटे नफरत की दीवारें होकर बेबस और लाचार, इतना जंग में बांटो प्यार, ठंडी ठंडी सुक्की घटाएं, सबके आंगन में घिर आएं, दुख पीड़ा का एक भी आंसू बैठना पलकों के द्वार, कलरव हो पर क्रंदन ना हो, पशु पक्षी का शोषण ना हो, जीवन रूपी इस उपवन में सबका अपना हो आधार, इतना जग में बांटो प्यार। प्रेमचंद जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा खूबसूरत लिखते हैं और अच्छा लगता है पढ़ना। सिस्टर सुनीता जी नमस्ते, किसी कारणवश आज आपको शो सुनने में बहुत लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लिखा है। सुनीता जी, मैं अगर पूर्वानुमान करूं, हमारे जवानों को भूस्खलन से बचाते हुए मौसम खुशनुमा बनाता और नदी को बाढ़ से रोकता, जय भारत के सैन्य बल। वाह, जय भारत के सैन्य बल। देव भट्टाचार्य, गुड़गांव से, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस आर सेना एंड आर कंट्री। जय हिंद, जय भारत। अगर मैं मौसम विभाग होता तो वो कहता आज ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। इकबाल राम गुलाटी, पीपली, जिला कुरुक्षेत्र से। थैंक यू सो मच। एंड अभी भी आपके पास टाइम है, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं कि अगर आप की पर्सनालिटी मौसम का अनुमान होता, आपका आपको वेदर फोरकास्ट करना होता आज अपना, तो क्या करते आप बताइए हमें जल्दी से 9868107070 पर। फिर मत कहिएगा आपका मैसेज मैंने नहीं शामिल किया। बहुत अच्छा गाना चलाने वाली हूँ और तब तक मुझे ढेर सारी मैसेजेस आनी चाहिए आपकी तरफ से 9868107070।

ऑलराइट जी, नमस्कार दोस्तों. मैं फरीदाबाद की ओर सफ़र कर रहा हूँ दिल्ली से, और ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बादल हूँ, उड़ चला हूँ शहर के दफ्तरों से रिहायशी इलाकों की ओर, बरसना चाहता हूँ रास्ते में थोड़ा रिमझिम रिमझिम उनके लिए जो मस्त मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं. तमन्ना है बरसने की खेत खलिहानों में, ताकि उपजे फसल हरे मैदानों में भी. मनीष शर्मा, कृपया मेरा मैसेज भी शामिल करें. कल परसों भी मैसेज किया था. लीजिए जी, आपका मैसेज शामिल हो गया. आप तो थैंक यू सो मच. और थैंक्स आरजी सुनीता. ठीक 8 बजे आपसे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. जी बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच देव जी. एंड दिस वन इज़, आप मेरा मैसेज लेना तो भूलेंगे नहीं. मैं दिल्ली में होता तो इतना बरसता कि दिल्ली का प्रदूषण कम कर देता. राम कुमार गुजरात में. आज वैसे प्रदूषण बहुत कम है दिल्ली का. अगर मेरी पर्सनालिटी वेदर फोरकास्ट होती तो वो एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसी होती. कभी खिलखिलाती धूप, कभी अचानक मस्ती भरी ठंडक, और कभी कभी एक ऐसे बवंडर जैसी ऊर्जा जो सबको छिला देती है. हर पल नया मज़ा और हर मौसम एक खास ट्विस्ट. सत्यजीत सरीन दिल्ली से. वाह जी वाह, ट्विस्ट, यू लाइक ट्विस्ट. नमस्कार सुनीता जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ. और आज के विषय में यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं मौसम विभाग होता तो मैं यही कहता कि आज भारी बारिश और उमस का अलर्ट है, इसलिए पकौड़े और चाय का इंतजाम पहले से करके रखिए. बारिश सबको पसंद है. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं आपसे 8 बजे मिलूंगी. अपना ख्याल रखिए और जैसा भी मौसम हो बस हमेशा खुश रहिए. यही है खुशी वाला मौसम, अपना फोरकास्ट हमेशा रखिए. And God bless you all, and I'll see you at 8. Till then, you take good care and enjoy this lovely number.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Finna make bang, bang. Finna make history. Turn this pain to energy.

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन ने आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज ओमान में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। उन्होंने भारत ओमान साझेदारी में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की। वेनेजुएला में भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक सम्पन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का शुभारंभ किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। और खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप की क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग वंस अगेन। 8:03 हो चुके हैं और हमारा शो शुरू हो गया। म्यूजिक मस्ती, इट्स फ्राइडे, इट्स स्टार्टिंग ऑफ द वीकेंड और मौसम भी कुछ ऐसा है सुहाना और वेदर फोरकास्ट आपका सुहाना ही है। तो क्यों ना सुने मस्त वाले गाने एंड फिर एंजॉय करें, थोड़ा सा डांस भी करें। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी, वेलकम टू द शो।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ऑलराइट जी, मेरे जाने का टाइम हो चला है. मैं आपसे फिर मिलूंगी. अपना ख्याल रखिए. हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय द वेदर. और ज़्यादा तला हुआ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है. दैट्स माय एडवाइस टू यू. बट गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. आई सी यू द नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.
1: समझ में नहीं आ रहा तेरे घर का पता है यार. धुंधे धुंधे परेशान हो गया.
2: तो कटिंग लाना है.
1: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ.

अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना कल विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित 6ठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उत्तरी रेलवे के 660 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

समय हुआ है 9:09 और मैं बिल्कुल यहीं हूँ प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर, और अभी से लेकर अगले एक घंटे तक यहीं रहूँगी आपके साथ। मैं प्रज्ञा तिवारी, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

देखिए, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि 10 इतनी जल्दी बच जाएंगे, पर सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, यानी अब हमारे जाने का टाइम हो रहा है। और अब आपके साथ होंगी लिपिका दास, प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का। तो मैं प्रज्ञा तिवारी आपसे मिलती हूँ 1 घंटे बाद। आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना कल विशाखापत्तनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित 6ठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के 4th संस्करण का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

समय हुआ है 11:13, हम आप पहुंचे हैं गजलों की गलियों में आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मैं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, प्रोग्राम रंगे महफिल।

बातें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर

0: हफ्ता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और वो समय जब घड़ी की सुई टिक टिक कर हमें कह रही है कि हम आपसे लें इजाज़त, पर आपको रेनबो से जाने की इजाज़त नहीं है। खूबसूरत गानों का ये दौर अभी जारी है, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की कभी कभी बेसुरी सी हो जाने वाली धुनों पर। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।

मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राज मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां पास हुई। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई में एक निजी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ 133 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा। स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:04 हुए हैं। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना पिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मंजिल से।

किशोर कुमार के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म चुपके चुपके से।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिर कब मिलोगे फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, ये बोल हैं उस गीत के जो अभी आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कल आज और कल।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कलाकार फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बाहरों के सपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

छलिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गा रही थी लता मंगेशकर। और अगला गीत है छोटे नवाब फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मुकेश को आइए सुनते हैं फिल्म अन्नदाता में।

आर शो प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत।

एक बजे है, आप सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्केट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेश

विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिदर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्यूरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में सिन्हा ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच और ज्यूरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फरारी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच जारी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।

में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वॉन्ग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक में भुलाए ना बने।

ये तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये रातें ये मौसम

तीन बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड से के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल वुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी शेल्ड फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित। सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष ट्रेनें रद्द की। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने एक विकेट पर 21 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले क्वार्टर

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित 6ठे स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग के अगले तीन से चार दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। अरे ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: पेट्रोल ते पवाए नी।
1: कोई गल नी, साडी गड्डी ते गुडवेल नाल चलदी है।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट

0: रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के में भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में अपने पूर्वी बेड़े में 17A परियोजना के अंतर्गत निर्मित छठे स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल करेगी। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी का दौरा करेंगे। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित। सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष ट्रेनें रद्द की। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम आराधना, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत।